FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं।

यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की

0: संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई

0: महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने की आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कभी कभी जीवन हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है और अगले ही पल आंधियों में हिला देता है, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल लेती है और वो शक्ति है हमारा सतगुरु। हम तो बस एक पतंग है जिसकी डोर उस सतगुरु के हाथ में है। तो उस सतगुरु से यही प्रार्थना, बाबा हमारी पतंग की डोर कभी मत छोड़ना।

इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनेंगे रामचरितमानस गान, प्रस्तुति है शोभना राव और मालिनी नाम्बियार की।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान FM 101.4 MHz पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, आज विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा शाम 5:30। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस व महावीर प्रसाद जयंती। शाम 6:20 पर कार्यक्रम गीता संदेश के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय से श्लोक 10-12 की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर CDS कौशल की। कार्यक्रम अन्नदाता का समय रहेगा शाम 6:30। शाम 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम संसार और कार्यक्रम जय जवान का समय रहेगा शाम 7:30। सुबह 7:40 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा नीति धर्म के संबंध में गांधी जी के विचार। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर और स्वरांजलि सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनिएगा शाम 8:00। हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा सुनिएगा सुबह 7:50 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनिएगा सुबह 8:30 पर।

सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत सुनिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें में रात 10 बजे। शाम 5 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा गुमशुदा व मृतक सूचना। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:45 से 10 बजे तक, दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक और रात्रि 9:15 से 10 बजे तक। ये थी आज दिनभर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदानप्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डलप्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विकदक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्णमञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तम् असंस्कृततैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल इन्धनस्य प्राकृतिक अनिलेन्धनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभाविपदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम् प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवपदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल इन्धनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः परीक्षां कर्तुं समीक्षां कर्तुं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीसत्यसाईमण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेकवैमानिकरक्षापरियोजनानाम् आधारशिलास्थापनकार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नतमध्यमयुद्धविमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 38 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरामण्डलस्य शिवपार्वतीतीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वतीमेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौङ्गरीमेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरमण्डलप्रशासनेन मौङ्गरी इत्यत्र सर् दब्बर् क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिकमेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिमप्राधिकरणयोजनायाः अन्तर्गतम् आभूषणनिर्यातकाः शून्यशुल्केन असंस्कृतवस्तूनाम् अथवा निवेशसामग्रीणाम् आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का

ग्यारहवें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार, राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओं, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ? कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है, तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें, तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें, तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
3: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
4: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
5: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
4: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
5: अब सो जाओ।
4: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है।

0: सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहार।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
5: हैं साहब।
2: ओए वो फायर आ रहा है।
6: झुक जाओ, झुक जाओ।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के

0: मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
1: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थीं। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
4: आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
5: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
6: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
5: On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari.

0: आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नीति धर्म के संबंध में गांधी जी के विचार।

गांधी चर्चा में आज सुनिए नीति धर्म के संबंध में गांधी जी के विचार। नीति विषयक प्रचलित विचार वजनदार नहीं कहे जा सकते। कुछ लोग तो मानते हैं कि हमें नीति की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए, कुछ मानते हैं कि धर्म और नीति में कोई लगाव नहीं है। पर दुनिया के धर्मों को बारीकी से देखा जाए तो पता चलेगा कि नीति के बिना धर्म टिक नहीं सकता। सच्ची नीति में धर्म का समावेश अधिकांश में हो जाता है। जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि नीति के खातिर नीति के नियमों का पालन करता है उसको धार्मिक कह सकते हैं। रूस में ऐसे आदमी हैं जो देश के भले के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। ऐसे लोगों को नीतिमान समझना चाहिए। जेरेमी बेंथम को, जिसने इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छे कानूनों के नियम ढूंढ निकाले, जिसने अंग्रेज जनता में शिक्षा के प्रसार के लिए भारी प्रयास किया और जिसने कैदियों की दशा सुधारने के यत्न में जबरदस्त हिस्सा लिया, नीतिमान मान सकते हैं। फिर सच्ची नीति का यह नियम है कि हम जिस रास्ते को जानते हों उसको पकड़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जिसके बारे में हम जानते हों कि वह सही रास्ता है, फिर उस रास्ते से हम परिचित हों या ना हों उस पर हमें चलना ही चाहिए। यानी जब हम जानते हों कि अमुक रास्ता सही है, सच्चा है, तब निर्भय होकर उस पर कदम बढ़ा ही देना चाहिए। इसी नीति का पालन किया जाए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए नीति और सच्ची सभ्यता तथा सच्ची उन्नति सदा एक साथ देखने में आती है। अपनी इच्छाओं की जांच करें तो हम देखेंगे कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसको लेना नहीं होता, जो चीज़ अपने पास नहीं होती उसकी कीमत हम सदा आंकते हैं। पर इच्छा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपना निज का स्वार्थ साधने की, ऐसी इच्छा को पूरी करने के प्रयत्न का नाम अनीति है। दूसरी प्रकार की इच्छाएं ऐसी होती हैं कि हमारा झुकाव सदा भला होने और दूसरों का भला करने की ओर होता है। हम कोई भला काम करें तो उस पर हमें गर्व से फूल न जाना चाहिए। हमें उसका मूल्य नहीं आंकना है बल्कि सदा अधिक भला होने और अधिक भलाई करने की इच्छा करते रहना चाहिए। ऐसी इच्छाओं के पूरा करने के लिए जो आचरण किया जाए उसको सच्ची नीति कहते हैं। हमारे पास घर बार ना हो तो इसमें लज्जित होने की कोई बात नहीं है, पर घर बार हो और उसका दुरुपयोग करें, जो धंधा रोजगार करें उसमें लोगों को ठगें, तो हम नीति के मार्ग से अलग हो गए। जो करना हमें उचित है उसे करने में नीति है। इस तरह नीति की आवश्यकता हम कितने ही उदाहरणों से सिद्ध कर सकते हैं। जिस जन समाज या कुटुंब में अनीति के बीज जैसे फूट, असत्य आदि देखने में आते हैं, वह जन समाज कुटुंब गिरकर टूट जाता है। फिर धंधे रोजगार की मिसाल ली जाए तो हम देखेंगे कि ऐसा आदमी एक भी नहीं दिखाई देता जो यह कह सके कि सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। न्याय और भलाई का असर कुछ बाहर से नहीं हो सकता, वह तो हम में ही रहता है। 400 साल पहले यूरोप में अन्याय और असत्य अति प्रबल थे। वह समय ऐसा था कि लोग घड़ी भर शांति से न रह सकते थे। इसका कारण यह था कि लोगों में नीति ना थी। हम नीति के समस्त नियमों का दोहन करें तो देखेंगे कि मानव जाति का भला करने का प्रयास ही ऊंची नीति है। इस कुंजी से नीति रूपी संदूक को खोलकर देखा जाए तो नीति के दूसरे नियम हमें उसमें मिल जाएंगे। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे नीति धर्म के संबंध में गांधी जी के विचार, और अब सुनते हैं बापू का ये प्रिय भजन।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी चर्चा, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना नीति धर्म के संबंध में गांधी जी के विचार। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिए हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजय नगाड़ा। आज के कलाकार हैं इंदराज दास व साथी।

0: संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

इसी के साथ कार्यक्रम बाजे नगाड़ा संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 8:15 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97 रुपए

0: के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन

0: सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
1: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a six-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sandor World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
4: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shandi Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
3: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
5: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. The Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
3: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Binte Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries, who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
6: There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
3: Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, among others, are attending the meeting. Oil companies have raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre, 8.67 rupees to 90.67 rupees per litre in New Delhi. Similarly, petrol prices in Mumbai will now cost 106.68 rupees per litre, while diesel price has been hiked to 93.14 rupees per litre. In Kolkata, petrol price has been increased to 108.74 rupees per litre, while the diesel price will now be 95.13 rupees per litre. In Chennai, petrol price has been raised to 103.77 rupees per litre and diesel price has been increased to 95.35 rupees per litre. The government has imposed a limit of 100 kgs on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Director General of Foreign Trade, DGFT, said, advance authorization for import of gold shall be issued, subject to a maximum permissible quantity of 100 kilograms. A report.
7: The DGFT has mandated a physical inspection of manufacturing facilities for all first-time applicants to verify their operational status and capacity. It added that any subsequent advance authorization for the import of gold shall be considered for issuance only upon fulfillment of at least 50% of the export obligation. The DGFT further said that the concerned regional authority of the directorate will submit a monthly report to the DGFT containing details regarding the issuance of advance authorization. Earlier, there was no limit on gold imports under the scheme. The advance authorization scheme allows the duty-free import of inputs that are incorporated into an export product. With Ankita Nakshit, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
3: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back, you're listening to Morning News. The Enforcement Directorate or ED has arrested Kolkata Police Deputy Commissioner Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. The ED questioned him at the CGO complex in Kolkata yesterday morning after he appeared before the agency. Biswas was arrested after being interrogated for more than 10 and a half hours. He will be produced before a court today. ED had summoned Biswas, former officer in charge of Kalighat Police Station, several times for questioning as part of its money laundering investigation into an alleged criminal-linked syndicate run by Shona Pappu alias Bishwajit Poddar. However, he had repeatedly skipped the summons. A high-level meeting was held at the residence of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday evening to review preparations for the upcoming National Eligibility Cum Entrance Test or NEET examination. Detailed discussions were held on various aspects of conducting the NEET exam smoothly and efficiently. In Kerala, the new UDF government will be sworn in on Monday. More from our correspondent.
8: V.D. Satheesan will be sworn in as the Chief Minister of Kerala on Monday. UDF sources in Thiruvananthapuram informed that the entire ministry will be sworn in along with the Chief Minister. At the same time, intensive discussions are continuing among the constituent parties of the UDF regarding the new ministers and their portfolios. It may be noted that the decision on the Chief Minister was taken only after 10 days of continuous discussions in Thiruvananthapuram and New Delhi following the election results on May 4th. The Congress and other constituents of the UDF are trying to complete the discussions on the new ministry by tomorrow. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: In a major step towards strengthening India's indigenous defense and aerospace capabilities, Defence Minister Rajnath Singh will lay the foundation for Advanced Medium Combat Aircraft Program facility at Puttaparthi in Sri Sathya Sai district of Andhra Pradesh along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu today. A report.
9: The Advanced Medium Combat Aircraft AMCA program facility being developed by the Aeronautical Development Agency under the Defence Research and Development Organisation will serve as the integration, development and flight testing hub

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एक बार जो फूल डाली से टूट गया वो फिर से लग तो नहीं सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो फिर से उस पर नया फूल आ सकता है। उसी तरह से जिंदगी में जो पल खो गए वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हौसला और विश्वास, इन दोनों से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसी विचार के साथ करते हैं कार्यक्रम का आगाज़।

श्रोताओं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनका उपयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां पर इनके उपयोग से हमारी जिंदगी आसान बन रही है, वहीं दूसरी ओर ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है और सही तरीके से निस्तारण ना होने पर यह ई कचरा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय ई कचरा जागरूकता अभियान शुरू किया। आपको बताना है हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई कचरा जागरूकता अभियान शुरू किया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई कचरा जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस सवाल का जवाब आप हमें SMS के माध्यम से दीजिएगा। हमारे नंबर 9466021336 पर 8:45 तक।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते की जो हमारे जीवन की पहली पाठशाला भी है और सबसे सुरक्षित आश्रय भी, परिवार। तेजी से बदलती इस दुनिया में जहां इंसान तकनीक से तो जुड़ता जा रहा है लेकिन भावनाओं से दूर होता जा रहा है, वहां पर परिवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी महत्व को समझाने और पारिवारिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए हर साल 15 मई यानी कि आज ही के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ये दिन मनाने की शुरुआत 1993 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी ताकि विश्व भर में परिवार संस्था के महत्व, चुनौतियां और उसके सामाजिक योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। परिवार केवल खून के रिश्तों का नाम नहीं है बल्कि ये तो प्रेम, त्याग, विश्वास, सहयोग और सुरक्षा का वो मजबूत पेड़ है जिसकी छाया में इंसान जीवन की कठिन राहों को पार करता है। श्रोताओं, जब एक छोटा बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, चलना सीखता है, संस्कार सीखता है, तब उसके साथ कोई विद्यालय, कोई स्कूल नहीं होता बल्कि उसके साथ होता है उसका परिवार। माँ की ममता, पिता का संरक्षण, दादा दादी का अनुभव और भाई बहनों का स्नेह, यही वह पूंजी है जो किसी भी व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है। आज के समय में परिवार कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बिजी लाइफस्टाइल या फिर यूं कह लीजिए काम का प्रेशर, मोबाइल और सोशल मीडिया के प्रति लगाव, संयुक्त परिवारों का टूटना, बुजुर्गों का अकेलापन और बच्चों का भावनात्मक तनाव, ये सारे संकेत हैं कि हमें फिर से परिवार के महत्व को समझने की जरूरत है। कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग आपस में बात करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। खाने की थाली साथ बैठकर खाने की परंपरा आजकल तकरीबन हर घर से लुप्त होती जा रही है। रिश्तों में संवाद कम हो रहा है और साथ ही गलत फहमियां बढ़ रही हैं, और ऐसे टाइम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ धन या सफलता नहीं है बल्कि एक खुशहाल और साथ निभाने वाला परिवार है।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे परिवार की। परिवार समाज की पहली इकाई है। अगर परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र भी सशक्त बनेगा। परिवार ही हमें सहनशीलता, सहयोग, करुणा और जिम्मेदारी जैसे मानवीय गुण सिखाता है। संकट के समय में सबसे पहले जो हाथ हमारा सहारा बनता है वह परिवार का होता है। कोविड महामारी के समय में पूरी दुनिया ने यह महसूस किया कि कठिन परिस्थितियों में परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। जब लोग घरों में सीमित थे तब परिवार ही मानसिक संबल बना। उस दौर ने यह सिखाया कि जीवन की असली खुशी अपनों के साथ बिताए गए समय में छिपी होती है। श्रोताओं, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने परिवार को समय दें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों की भावनाओं को समझें, आपस में बातचीत बढ़ाएं, रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। छोटी छोटी बातें जैसे साथ बैठकर खाना, हालचाल पूछना, एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना, ये परिवार को और भी मजबूत बनाता है। ये जो आज का दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ये केवल उत्सव मनाने का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर भी है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने परिवार को पर्याप्त समय दे पा रहे हैं? क्या हम अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों की भावनाओं को समझ रहे हैं? क्या हम रिश्तों को मोबाइल स्क्रीन से ऊपर रख पा रहे हैं? परिवार के प्रेम, एकता और संस्कारों को सहज कर रखें, क्योंकि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां मिल जाएं, दिन के अंत में इंसान को सबसे अधिक सुकून अपने परिवार के बीच मिलता है, अपनों के बीच मिलता है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
4: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
3: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
5: हम सब की अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
3: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
4: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
3: आकाशवाणी
5: विश्वास की आवाज।
6: श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्य के उस महान व्यक्तित्व को जिन्होंने केवल लेखनी से शब्द नहीं लिखे बल्कि पूरे हिंदी साहित्य को नई दिशा, नई चेतना और नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं हिंदी गद्य और आधुनिक हिंदी साहित्य के युग निर्माता महावीर प्रसाद जी को, जिनकी जयंती भारतीय साहित्य जगत में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। आचार्य महावीर प्रसाद जी का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ। जन्म तो उनका साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाई जिसने पूरे हिंदी साहित्य को प्रकाशित कर दिया। वह समय ऐसा था जब हिंदी भाषा अपने विकास के संघर्ष से गुजर रही थी। भाषा में एकरूपता नहीं थी, साहित्य सीमित दायरे में था और समाज अनेक कुरीतियों से घिरा हुआ था। ऐसे समय में आचार्य जी ने अपनी लेखनी को समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने केवल साहित्य नहीं लिखा बल्कि साहित्य को समाज की आवाज बना दिया। उनके विचारों में देशभक्ति थी, समाज सुधार की चेतना थी, महिलाओं के सम्मान की बात थी और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम था। आचार्य जी का सबसे बड़ा योगदान हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती के संपादन के रूप में माना जाता है। जब उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला तब हिंदी साहित्य में एक नई क्रांति का आरंभ हुआ। उन्होंने अनेक साहित्यकारों को मंच दिया। उन्होंने हिंदी भाषा को सरल, शुद्ध और प्रभावशाली बनाने का काम किया। यह भी सिद्ध किया कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और राष्ट्र को जागृत करने की शक्ति भी रखती है। आज जब हम आधुनिकता और तकनीक के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तब आचार्य जी के विचार हमें याद दिलाते हैं कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है। आज जरूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी हिंदी भाषा और साहित्य की उस विरासत को समझे जिसे महावीर प्रसाद जैसे महापुरुषों ने अपने परिश्रम और त्याग से समृद्ध बनाया। शब्दों से जिसने समाज जगाया, हिंदी को नई पहचान दिलाई, ऐसे महान साहित्य साधक को शत शत नमन, बारंबार नमन।

श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरू में हमने आपसे पूछा था किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई कचरा जागरूकता अभियान शुरू किया है, और इसका सही जवाब है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और साथ ही खान मंत्रालय। अब आपको बताते हैं उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया। नाहन हिमाचल प्रदेश से आप हैं योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर, दत्रेगी भाटापारा से सही जवाब दिया है हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा ने, गांव ढानी कुतुबपुर हांसी से आप हैं रामधारी अवाना, अनाया और ओजस अवाना, दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप और विश्वदीप येले, गांव भाणा ब्राह्मणावाला नरवाना से आप हैं मेघराज शर्मा, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, धुलिया महाराष्ट्र से आप हैं अशोक कवाड़े, आदित्य और दीपमाला कवाड़े, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, सांगली से हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे, गांव सांतरी से मदन कंबोज, प्रियांशु और स्मृत कंबोज, किशोर की नगरी खंडवा से डीपी सैनी और गौरव सैनी, छत्तीसगढ़ बोडसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू, गांव सांतरी से ईश्वरदयाल कंबोज, लाजवंती और भव्य कंबोज, बुल्ढाना वनशिंगी से अमोल मानकर और सहदेव दामोदर, बोडसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, नेहा देवी साहू और रुद्रांश प्रताप साहू, ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण भाई सोनी, अहमद भाई बागबान और लड्डू कुमारी, सोलन हिमाचल प्रदेश से टिया और कृष्णा, बेंगलोर से जयश्री और सुनील, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया और अनस, योगी मोहल्ला बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और गुरशब्द सिंह राहुल, शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा, गांव गाला जिला अम्बाला से राजेंद्र कुमार, मरकीत कौर, आरती रानी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि और सानवी, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, लालपुर अमारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव, गांव खुकनी से करनाल से संजीव कुमार और अमन कुमार, ग्राम पंचायत नहरसबार जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से विनोद तोमर, संजू देवी और ममता देवी, शिलाई हिमाचल प्रदेश से तांसी ललिता सिंह, भगवान सिंह, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा कामड़े, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार साहू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसु, नसबगढ़ नई दिल्ली से सुमन, गौरव शर्मा और सौरभ शर्मा, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कडवासरा, सचिन और योगेश, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना और लव्या, साहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला और प्रियांशी, ग्राम कदुआपड़ा जिला जगत सिंहपुर उड़ीसा से कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू, आखिरी दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, ऊपरकोट बुलंदशहर से

बाद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शहनवाज सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से, पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके। ये थे हमारे सभी श्रोता जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया और कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई।

श्रोताओं, एक बार की बात है, एक पत्थर ने बहते हुए पानी से पूछा, तू इतना कमजोर, इतना हल्का होकर भी मुझ जैसे मजबूत पत्थर को कैसे काट देता है? पानी मुस्कुराया और बोला, मैं ताकत से नहीं, अपनी लगातार कोशिश से जीतता हूं। पत्थर को बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर से पूछा, वो कैसे? अब देखो, पत्थर रोज वहीं खड़ा रहा और पानी रोज बहता रहा। धीरे धीरे वही पत्थर घिसने लगा जिसे खुद पर बहुत घमंड था। लगातार कोशिशों से हल्के से पानी ने भी मजबूत पत्थर को घिसा दिया। श्रोताओं, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कई लोग एक दिन मेहनत करते हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, अपनी पिछली गलतियों से सीखता है, वही एक दिन बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा देता है। ताकत नहीं, लेकिन लगातार की हुई मेहनत ही इंसान को जीत दिलाती है। है तो छोटी सी बात, लेकिन है सोचने वाली।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 MHz पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी है,
3: हर पल आपके साथ।
2: समाचार हो या सदाबहार गीत,
3: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
2: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
3: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
2: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे पंकज उदास की आवाज में।

0: इसी के साथ कार्यक्रम स्वरांजलि अब संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: जहन में हमेशा ताजा रहा, भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
2: हमको दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है,
3: हमको भी कुछ बात करना है,
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
3: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए, आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
1: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस

1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

सन 2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साइन तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यह कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, धागा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना होता है, धागा खींचने से टूट जाता है और रिश्ता अहंकार से। इसलिए रिश्तों में जरा झुकना सीख लिया करो, क्योंकि अकड़ ही अक्सर दूरियां बढ़ा देती हैं। और यहां तो हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम लेकर, जिससे कि ये रिश्ता हमारे श्रोताओं का और आकाशवाणी परिवार का और भी गहरा हो सके। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जब तक हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं। तब तक आनंद लीजिए इस गीत का।

0: Hallo? Hallo? Hallo? हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, नमस्कार। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से। थैंक
0: सुनील जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: यू मैम। बस ठीक मैम, बस बैठे थे ये आकाशवाणी सुनते हुए मैम।
0: जी, मौसम के कैसे मिजाज हैं?
1: जी मैम, अभी तो उमस ज्यादा है मैम, गर्मी बहुत है मैम। जी जी मैम,
0: तो क्या उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए?
1: यही शाम सुबह निकल रहे हैं काम के लिए, बाकी अभी दोपहर में आराम करते हैं मैम, और छाव में बैठते हैं, पीपल के छाव के नीचे मैम।
0: जी, खान पान का भी ध्यान
1: जी
0: रखते हैं?
1: जी जी बहुत अच्छा रखते हैं मैम। जी
0: जी, मौसम के अनुसार हल्का सुपाच्य भोजन लेना।
1: जी जी मैम।
0: जी, चलिए, अच्छी बात है कि आप गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं। आज कौन सा
1: जी
0: गीत
1: मैम।
0: सुनेंगे?
1: जी राम फिल्म है।

0: हम तेरी गंगा मैली हो गई, कोई
1: जी
0: सा भी सुनवा दीजिए, इसमें बहुत अच्छे गाने हैं मेरी।
1: जी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
0: ओके मैम, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हाँ जी, हेलो।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैडम। मैडम
0: कौन बात कर रहे हैं
1: कौन से मुस्तकीन? ठीक
0: जी? मुस्तकीम जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: है जी, बहुत बढ़िया। टाइम पास हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है मैडम।
0: जी, अच्छी बात है कि अच्छे से आप अपना जो समय है वो व्यतीत कर पा रहे हैं। आज कौन सा गीत
1: मैडम
0: सुनेंगे?
1: आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैडम गाना वर्दी फिल्म का है। वर्दी गाने के बोल भी नहीं है। अब मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। वर्दी
0: समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताइए। वर्दी?
1: हाँ वर्दी ऐसी सन्नी देओल की।
0: इस टाइम हमारी लाइब्रेरी में, माफ कीजिएगा, ये फिल्म नहीं है। हम आपको किसी और फिल्म से गीत सुनवा देते हैं।
1: देशभक्ति सुना लो मैडम
0: जी
1: कोई।
0: जी कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। कौन बात कर रही है? हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। कौन बात कर रही है? अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं सीमा बोल रही, पुंडरी से। ठीक
0: जी सीमा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसी हैं आप?
1: है मैडम जी, आप कैसे हो मैम?
0: हम भी बहुत बढ़िया। तो इस टाइम तक तो घर का काम वगैरह हो गया होगा, तो इसके बाद फिर कैसे टाइम पास करती हैं?
1: बस रेडियो सुन लेते हैं मैम।
0: रेडियो सुन लेते हैं। तो कौन से प्रोग्राम पसंद करती हैं?
1: बस मैम ज्यादातर तो यही सुनेगी।
0: सजीव फोने नहीं सुनती हैं ज्यादा। चलिए, अच्छी बात है। आज कौन सा गीत सुनेंगे? हाँ जी, मेरी वॉइस कम आ रही है, मुझे आपकी बहुत कम आ रही है। आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: खलनायक फिल्म से मैम,
0: खलनायक
1: ऐसे तेरी याद आती है।
0: जी, आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी,
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: हाँ जी सर,
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: रोहतास बोल रहा है जी।
1: रोहतास जी, आपका स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: हेलो,
1: आपकी तरफ से ना बहुत शोर आ रहा है।
2: आप नहीं आने का जी, मैं दूर आ गया जी, रोड पे खड़ा था
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं कुरुक्षेत्र पटियाला बैंक कॉलोनी से जी।
1: जी, क्या करते हैं आप?
2: मैं जी लोडिंग वाला ड्राइवर हूँ जी, यहाँ अपना लोडिंग वो गाड़ी चलाता हूँ, सुपर कैरी
1: जी। तो काम ड्राइव जब करते हैं तो साथ साथ रेडियो चलता रहता है?
2: हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी में ना एफएम लगा हुआ जी।
1: जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
2: राज फिल्म का जी।
1: गीत के बोल बताइए।
2: बस कोई भी गाना हो जी राज का
1: जी। आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
2: एक नाम लेना चाहता हूँ जी।
1: बिल्कुल लीजिए।
2: मेरे बेटे का नाम करण है जी।
1: जी,
2: गुड़िया नेहा
1: जी,
2: और जी पत्नी सरोज है जी।
1: जी, आनंद दीजिए।
2: और प्रेसरों के साथ काम कर रहे जी।
1: जी।

0: किशोरावस्था यानी कि टीनेज, जीवन का वह दौर जहां पर एक बच्चा धीरे धीरे बचपन से निकलकर बड़े होने की ओर कदम बढ़ाता है। श्रोताओं, यह उम्र सपनों की भी होती है और संघर्षों की भी, उत्साह की भी होती है और कई बार उलझनों की भी। आज का टीनेजर बच्चा बाहर से कितना भी आत्मविश्वासी क्यों न दिखाई दे, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल, डर और शायद दबाव, ये सब चलते रहते हैं। पढ़ाई का तनाव, करियर की चिंता, दोस्तों का प्रभाव, सोशल मीडिया की चमक और खुद को साबित करने की होड़, ये सब कई बार मिलकर उसके मन को थका देते हैं। और ऐसे समय में उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी ऐसे अपने की जो उन्हें समझे, सुने और बिना डांटे उनका हाथ थाम ले। श्रोताओं, अक्सर हम टीनेजर बच्चों को सलाह देते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मोबाइल कम चलाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह समझने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है? हमें उनका मददगार बनना होगा। मददगार मतलब एक ऐसा साथी जो उनकी भावनाओं का सम्मान करे, उनकी बात सुने और प्यार से उन्हें सही गलत का फर्क बताए। कई बार एक किशोर बच्चा बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है जैसे उसे कोई समझता ही नहीं। और ऐसे में अगर माँ बाप, शिक्षक या परिवार का कोई भी सदस्य उसका दोस्त बन जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। श्रोताओं, आज मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं किशोरों में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कई बच्चे डर या असफलता या फिर तुलना के कारण टूटने लगते हैं, और ऐसे में हमारी एक छोटी सी संवेदनशीलता, एक प्यार भरी बातचीत और एक भरोसेमंद साथ उन्हें टाइम पर संभाल सकता है। हमें बच्चों को यह एहसास दिलाना होगा कि गलतियां होना जीवन का हिस्सा है, असफलता अंत नहीं है, और हर परिस्थिति में उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। टीनेजर्स बच्चों को सिर्फ मशीन ना समझे मार्क्स लाने की, उनके सपनों को सुने, उनकी पसंद को समझे और उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें। कई बार बच्चे सलाह नहीं, सिर्फ अपनापन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें जज किए बिना कोई उन्हें सिर्फ सुन ले। श्रोताओं, जब हम किशोर बच्चों का सहारा बनते हैं तब हम केवल एक बच्चे की मदद नहीं करते, बल्कि एक मजबूत, आत्मविश्वासी और संवेदनशील भविष्य तैयार करते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर, परिवार और समाज के जो टीनेजर्स बच्चे हमारे आसपास हैं उनके मददगार बने, उन्हें डांट से ज़्यादा संवाद दें, दबाव से ज़्यादा विश्वास दें और आलोचना से ज़्यादा प्यार दें। क्यों ना हम उनके दोस्त बने, इतना तो कर ही सकते हैं। देखते हैं कौन से श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो
1: जी, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, कौन बात कर रहे हैं?
1: रामवीर, फिर मुझसे जीरकपुर क्षेत्र से बात कर रहा हूँ।
0: जी रामवीर जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, और जैसे मैं अभी सुन रहा था प्रोग्राम, ये हमें बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे ये एक दोस्त बन के ही हमें बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास में देखना चाहिए। हम ये कह देते हैं कि बच्चे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको मौका देना चाहिए दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया, हमें उन्हें मौका देना चाहिए। चलिए गीत बताइए, आज कौन सा सुनेंगे?
1: गीत दीदी अपन अपन है, है, है।
0: जी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है. कोई बात नहीं. श्रोताओं, आज के इस डिजिटल युग में तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं रही बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक सहायता पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी बन चुकी है. और इसी दिशा में भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की है, पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया पंखुड़ी एक ऐसा डिजिटल मंच है जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाना है. पंखुड़ी कितना सुंदर नाम है. जैसे फूल की पंखुड़ियां मिलकर उसकी सुंदरता बढ़ाती हैं, उसी प्रकार ये पोर्टल समाज, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत को एक साथ जोड़कर महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है. ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर व्यक्ति, एनजीओ और एनआरआई और कॉरपोरेट संस्थाएं महिलाओं और बाल विकास से जुड़े कार्यों में सहयोग करती हैं. इस पोर्टल के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और आंगनवाड़ी सेवाओं जैसी बहुत सारी योजनाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलती है. और सबसे जरूरी बात है पंखुड़ी पोर्टल की पारदर्शिता. ये पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है. इसमें योगदान और सहयोग की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होती है जिससे कार्यों की निगरानी और ट्रैकिंग आसान हो जाती है. श्रोता, हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेहतर पोषण, शिक्षा और सुरक्षा की जरूरत है. बहुत सी महिलाएं आज भी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं और ऐसे समय में पंखुड़ी जैसे डिजिटल पहल आशा की नई किरण बनकर सामने आती है. पंखुड़ी उन हाथों को जोड़ने का प्रयास है जो मदद करना चाहते हैं और उन जिंदगियों तक सहायता पहुंचाने का माध्यम है जिन्हें सच में इसकी जरूरत है. आज जरूरत इस बात की है कि समाज का हर वर्ग महिलाओं और बच्चों के विकास को अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है और जब बच्चे सुरक्षित होते हैं तो देश का भविष्य उज्जवल बनता है.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे। अशोक खोसला की आवाज में कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा यह कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूपकुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत।

गीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर

गहरा गहरा नथु खेरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल कवाली पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग दरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी

29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जयघोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाज़ें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं। साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं, महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10:00। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5:00 से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे,
0: सच भाई
1: हुए हैं आज बेगाने,
2: हमी पर ताने कसते हैं, हमी पर ताने कसते हैं, हमी पर ताने कसते हैं।
3: अरे कैसे

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत, यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 100,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। गर्मी जहाँ झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नरम फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियाँ आपके लिए फिल्में ज़्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं? और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज़्यादा पड़ती थी या दुलार ज़्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपये और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये और डीजल 95.13 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपये और डीजल का मूल्य 95.35 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। हरियाणा सरकार ने करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना तथा उसकी परियोजना प्रबंधन सलाहकार संस्था पीएमसी की अवधि को आगामी 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे चल रही परियोजनाओं को

0: किया जा सके और नागरिकों को आधुनिक शहरी आधारभूत सुविधाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर एनडीए सरकार पर आरोप लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पेपर लीक हुआ है इसका सबको दुख है, लेकिन केंद्र सरकार बिना किसी देरी के सीबीआई से जांच करवा रही है और बहुत लोग पकड़े जा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि इसके बाद पेपर लीक करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत हुई, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह भाजपा की ठीक कार्यप्रणाली पर जनता ने मोहर लगाई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 नगर निगमों, 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन निगम में पहले भी भाजपा ने ही जीत हासिल की थी। पूर्व मुख्यमंत्री रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सांपला नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव न लड़ने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने पहले भी कभी पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सांपला में भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को सिर्फ 34% वोट मिले हैं, जबकि 66% वोट विरोध में पड़े हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले दिनों में खंड स्तर तक संगठन बढ़ाया जाएगा। हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुओं के लिए 11वें चरण के संयुक्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में गाय और भैंसों को मुंह खुर और गलघोंटू जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिसार के उपनिदेशक डॉ. रविन्द्र श्योराण ने बताया कि इस अभियान के तहत हिसार जिले में भी 4 वर्ष से अधिक उम्र के पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है।
1: हमारी टीमें वैक्सीनेशन पर निकल चुकी है। पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 5,36,000 एनिमल्स को, गाय भैंसों को हमने टीकाकरण करना है, जिसके लिए हमारे 90 जीवित है, पशु अस्पताल है, उसकी 142 टीमें बनाई गई हैं। वो सभी टीमें घर घर जाकर अपना वैक्सीनेशन करेंगी। अब की बार वैक्सीनेशन जो भी डाटा है उसको पोर्टल पर हमने चलाना है। जिस भी पशु को हम वैक्सीनेशन करेंगे उसका मोबाइल नंबर पे एंट्री करते ओटीपी आएगी, ओटीपी लेके हम उसका पूरा डिटेल भरेंगे। 2 बीमारियों का इकट्ठा टीकाकरण है, जो कि इंडिया में सिर्फ हरियाणा स्टेट में शुरू किया गया है और किसी स्टेट में, दोनों का इकट्ठा नहीं, वो अलग अलग होता है। एक तो मुंह खुर की बीमारी है हमारी और एक गलघोंटू की बीमारी है।
0: उन्होंने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि निशुल्क टीकाकरण का लाभ उठाएं, इससे दूध कम होने या बच्चा गिरने का कोई खतरा नहीं है। सावधानी के तौर पर 7 महीने से ऊपर की गर्भवती भैंस और 6 महीने से ऊपर की गाय को टीकाकरण से बाहर रखा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गाँव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो ज़रूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया कि वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीज़ी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम छुपाई, पोसंपा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोर पुलिस, कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफ़र में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो रेल की गाड़ी पे यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज़्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आँख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी भी के घर में नानी को ज़्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे हैं ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो ज़रूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। ज़मीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रख कर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में भाई। इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुलसती हुई तेज़ गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफ़र करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफ़र सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के

0: मेरी छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई। जान किस अदा से, जान किस अदा।

0: सबकी छुट्टी हो गई, अपनी हो गई सगाई, सबकी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है, जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं। और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूँ, एरोप्लेन की आवाज़ आती है तो ऊपर देखता हूँ, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूँ, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूँ। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था, ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से जलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए, तो आप हमें बताइए। तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

0: घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयामों को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहाँ सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहाँ जाएं, और गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें जहाँ के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे, हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना, ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसा कि आपने जिक्र किया गिल्ली डंडा छुपन छुपाई पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था और हम दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह हैं और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था, ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ आओ आओ आओ आओ। ये कैसे चले लाओ पैसे चले, आहा, खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन फिर तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो
3: नाव चली नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
4: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन ने कालू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
4: फिर क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक घीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
4: मगर नानी क्या कर रही थी?
1: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
4: कितनी गहरी?
1: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15 दूना, 30, 43, 44, 74, 75, 96, 97, 85, 90, 20 नंबर 35 गले में रस्सा।
0: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी, गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं, खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे, मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था, दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने

मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज़, टक टक की आवाज़ निकालना आदि। वो सब आवाज़ मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज़ में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियाँ देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था और शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज़्यादा उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना रे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने की नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज़्यादा पाया। हाँ कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो ज़रूर कोई ना कोई पीटता। तो इन्होंने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

मैंने नहीं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम कर रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम पर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज़ दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई या गिल्ली डंडा, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीज़ों का। और एक साथी कहती हैं कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है, बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा, वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बता

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तब भी बना हुआ है। और हमारे कर साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने की गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वे मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैट साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना, और जैसा इसमें कहा गया भी, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां ख़त्म होती है तो हम भी लौटते हैं, और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाज़त। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफ़र जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जनजागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव-गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव-गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते हैं,

हे बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण करो।

0: 도하시 가곡 매진이 빈바다가세 반대바다람 반대바다람.
1: ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिलें तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
2: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त है।
1: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक

0: के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
1: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
0: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है, जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
0: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसे तु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजला

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
7: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में PV सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो IPL में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवे ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा।
1: पहले तो दिल फेंक कभी ना देखा ऐसा वैसा।
0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा। मानो या

राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना। अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो अपने चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त दादा दादी, नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है, और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा
0: जी। विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है,
0: और सच
1: ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपके पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार कर

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउस वाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप? कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उन्हीं के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी, बहुत।
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना।
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते कभी कम ज्यादा हो जाता है।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने की तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत पे फल मिलता ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती है आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो? रहता रेडियो दिन भर
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई। राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: हाँ, गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सच मुझे ने परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे, देवर है, देरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहिणियां होती हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी लीला धोले
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगा? खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती है आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती है आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चे का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: हमारा खेत में जाना पड़ता
0: है। खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके हैं कौन, मतलब माई
0: माई गाना है। हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटी से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउस वाइफ है, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
0: क्या बात है, आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
1: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं कि ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
0: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी?
0: जी। और आपने पसंद
1: दो महीना से छटपटा रहे थे, हाँ, ये कब दो महीना पूरा होगा?
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: जसमती मैया तेरे बोले नंदलाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, पास तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए, कभी शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती है जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात,
1: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल से है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन,
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
0: क्या बात है,
1: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
1: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का लाना पड़ जाए।

0: ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002. दूसरा नंबर है 2867028 2867028. और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपी आने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैक बोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका। सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी।

अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंत और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए।
सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से
2: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सायंकालीन सभा में तमाम सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय शाम के 5:25 हुए हैं। सायंकालीन सभा में तमाम सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आपको जानकारी दिए देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

नियमित कार्यक्रम गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर CDS कौशल की। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम अन्नदाता प्रस्तुत किया जाएगा शाम 6:30 पर और कार्यक्रम ग्राम संसार का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:00। युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:30 पर और कार्यक्रम गाने नए पुराने आप सुन सकते हैं शाम 5:05 पर।

फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान प्रस्तुत करेंगे शाम 7:30 पर, और गैर फिल्मी रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता ये महफिल सजेगी शाम 7:45 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आप इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं रात्रि 8 बजे, और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 10 बजे से। हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप इस प्रकार से सुन सकते हैं। रात्रि 9:15 पर होगा कार्यक्रम आपके लिए, और कार्यक्रम छाया गीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 9:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अब सुनिए कुछ गुमशुदा संबंधी सूचना। सूचित किया जाता है कि मधु पुत्री गोपाल पुत्र रामसत, जो कि शोरगीर बस्ती धोबी मोहल्ला थानेसर थाना कृष्णा गेट थानेसर के रहने वाले हैं, जिस लड़की की उम्र है करीब 20 वर्ष, और जो कि अपने धोबी मोहल्ला थानेसर से दिनांक 12 मई 2026 से सुबह 10 बजे से घर से बगैर बताए कहीं चली गई है। आसपास व रिश्तेदारी में पता किया, जिनका कोई सुराग हासिल नहीं हुआ और ना ही वो घर वापस आई है। इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो कि आप अगर इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ गोल चेहरा कद 4 फुट 5 इंच उम्र है 20 साल, नीला फ्रॉक व पैरों में चप्पल पहने हुए है। इनके संबंध में अगर कोई सूचना आपके पास है तो आप साझा कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है प्रबंधक अफसर थाना कृष्णा गेट थानेसर का 7056700123। मोहरर थाना कृष्णा गेट थानेसर का नंबर है 7056700823, और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर आप नोट कर सकते हैं 01744222100। और अब एक अन्य गुमशुदा संबंधी सूचना। 13 अप्रैल 2026 को एक लड़का जो कि राजकुमार, जिसका जो कि सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र से बगैर बताए अपने घर से कहीं चला गया, जिसका हुलिया इस प्रकार है, रंग सांवला, शरीर दुबला पतला, जो पैंट कमीज पहने हुए है। गुमशुदगी की अगर आपके पास में कोई भी सूचना है इनके संबंध में, तो आप पुलिस चौकी सेक्टर 7 से संपर्क साध सकते हैं। और एक और गुमशुदा संबंधी सूचना। गुलाब पुत्र मेहर सिंह निवासी खानपुर रुडान थाना KUK जिला कुरुक्षेत्र ने अपने यहाँ पर एक ज्योति सर आकर दरख्वास्त दर्ज कराई है कि उनकी बेटी खुशी, जो कि 20 अप्रैल 2026 को घर से बगैर बताए शाम 3 बजे से घर से निकली, जिनकी हर तौर पर तलाश की गई लेकिन उनकी कहीं कोई सूचना किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। और अगर इनका हुलिया इस प्रकार है, हरा टॉप ब्लू जीन्स पहन रखी है और स्लीपर पहन रखे हैं, रंग सांवला लंबूतरा चेहरा, हाइट है कद है करीब 5 फुट, और साथ में बैग लेकर के गई है। अगर इनकी बेटी खुशी कहीं किसी को नजर आए तो आप सूचित कर सकते हैं इन संपर्क सूत्रों पर। गुलाब सिंह जिनका नंबर है 9992459171, और MHC पुलिस स्टेशन JSR उनका नंबर है 7056700825, और एक अन्य संपर्क सूत्र है 7056700125। सूचना समाप्त हुई। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है, और अब सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। और दोस्तों, कार्यक्रम में आगाज़ इस एक बहुत ही चुलबुले से गीत के साथ

अभी आपने सुना यारियां फिल्म का गीत, जिसमें आवाज थी हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की। गीत और संगीत भी था हनी सिंह का। अगला गीत है कार्यक्रम में फिल्म सीता और गीता से, आवाजें आशा भोंसले और मन्ना डे की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

और आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म काय पोचे का गीत। आवाज़ है अमित त्रिवेदी की। गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

और आइए दोस्तों, कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म पारस मणि का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और कमल बारोट की। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

और अब आप सुन रहे हैं इस वक्त कश्मीर में तू कन्याकुमारी। ये गीत है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से, आवाजें हैं सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

और दोस्तों यही थी आज के इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिष्मा की ओर से। आकाश जितने बड़े सपने और उन्हें पूरा करने का हौसला रखने वाले हमारे तमाम युवा साथियों को युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत। और आज है आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ज्योतिष्मा, स्वीकार करें बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। और दोस्तों, अगले कुछ मिनटों तक यानी अगले आध घंटे तक हम बात करेंगे कुछ आपसे उन विचारों की जो जिंदगी को नई दिशा देते हैं। कहा जाता है कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। आज का युवा तकनीक से जुड़ा है, जागरूक है और अपने सपनों को सच करने का साहस भी रखता है। लेकिन तेजी से बदलती इस दुनिया में मानसिक शांति, अच्छी सोच और सही मार्गदर्शन भी उतना ही जरूरी है। और आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कुछ बातें जो कि शानदार तो होंगी ही होंगी, लेकिन आपके लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था है हमारे पास। और साथ ही साझा करेंगे ऐसे विचार जो आपके मन में भरेंगे नई ऊर्जा। तो सुनिए ये कार्यक्रम का पहला गीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: स्वागत है सभी सुनने वालों का एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, हमने आपको आज पहला गीत सुनाया कि लव यू फैमिली। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। परिवार जो कि हमारे जीवन की सबसे पहली पाठशाला है, यहीं से हमें प्रेम, संस्कार, सहयोग और जिम्मेदारियों का ज्ञान मिलता है। हर वर्ष आज ही के दिन यानी 15 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 1993 में की थी, ताकि लोगों को परिवार के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। और आज की इस तेज़ रफ्तार और डिजिटल दुनिया में लोग अपने काम और मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि परिवार के साथ समय बिताना कम होता जा रहा है। ऐसे समय में ये दिन खास तौर पर हमें याद दिलाता है कि परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि भावनाओं, विश्वास और सुरक्षा का आधार है। एक मजबूत परिवार व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। वहीं वैज्ञानिक शोधों के अनुसार जो लोग अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं वो अधिक खुश और तनाव मुक्त रहते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में भी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के संस्कार और बुजुर्गों का अनुभव जीवन को सही दिशा देते हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार को विशेष स्थान दिया गया है। यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा प्रेम, एकता और आपसी सहयोग का प्रतीक मानी जाती है। परिवार हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों में साथ निभाना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए दोस्तों कि हम अपने परिवार को समय देंगे, आपसी संबंधों को मजबूत बनाएंगे और प्रेम तथा सम्मान की भावना को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक खुशहाल परिवार ही एक मजबूत समाज और बेहतर राष्ट्र की नींव होता है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
2: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
1: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।
3: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है युवाणी। दोस्तों, आज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती है, यानी हिंदी साहित्य के महान विद्वान, समाज सुधारक और उत्कृष्ट संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती हिंदी भाषा और साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। उनका जन्म आज ही के दिन 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य और खड़ी बोली हिंदी के विकास का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। आचार्य द्विवेदी ने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादन के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने केवल साहित्य का विकास ही नहीं किया बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया। उनकी लेखनी में राष्ट्रप्रेम, नैतिकता, सामाजिक सुधार और भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। उन्होंने अनेक नए लेखकों और कवियों को आगे बढ़ने का अवसर भी दिया, जिनमें मैथिली, शरण गुप्त जैसे महान कवि भी शामिल हैं। आचार्य द्विवेदी का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने का माध्यम है। उन्होंने सरल, शुद्ध और प्रभावशाली हिंदी को बढ़ावा दिया। आज भी उनका योगदान हिंदी साहित्य में अमूल्य माना जाता है। उनकी जयंती हमें यह संदेश देती है कि शिक्षा, भाषा और अच्छे विचार समाज को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि युवा वर्ग ज्ञान, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाए तो देश का भविष्य और भी उज्जवल बन सकता है। सच ही कहा गया है कि कलम की ताकत समाज को नई दिशा दे सकती है।

0: दोस्तों, आज के दौर में ज्ञान और तकनीक ने दुनिया को बहुत तेज बना दिया है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी चुनौती जो बढ़ी है वो है धैर्य और आपसी संवाद की कमी। पहले लोग घंटों परिवार और मित्रों के साथ बैठकर बातें करते थे, जबकि आज अधिकतर समय हमारी गर्दन झुकी रहती है हमारे ही मोबाइल स्क्रीन पर, और ना जाने कब घंटों बीत जाते हैं। और एक शोध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय परिवार, किताबों और सकारात्मक गतिविधियों को देता है तो उसका मानसिक तनाव काफ़ी कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की लगभग 65% युवा आबादी अपने करियर को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहती है। ऐसे में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी बेहद ज़रूरी हैं। सफल वही है दोस्तों जो असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है। और महान जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने ना दे, हमें बेचैन करके रखे। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए तीन बातें हमेशा याद रखनी होंगी। पहली, समय का सम्मान करें। दूसरी, सीखना कभी भी बंद ना करें। और तीसरा, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर जरूर करें। और आज का युवा यदि अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए तो वह केवल अपना नहीं बल्कि पूरे समाज और देश का भविष्य बदल सकता है। इसलिए हमेशा नई चीज़ें सीखें, अच्छे विचार अपनाएं और अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें, क्योंकि हर युवा के भीतर कुछ ना कुछ बड़ा करने की शक्ति तो ज़रूर है।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक

जी हाँ दोस्तों, इसी सुंदर संदेश और इस गीत के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहेंगे। आशा है कि आज की बातें, जानकारी और गीतों ने आपके मन को नई ऊर्जा और अपनापन जरूर दिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि जीवन की असली खुशी रिश्तों, प्रेम और साथ रहने में ही है। अपने परिवार को समय दीजिए, अपनों को सम्मान दीजिए और हर रिश्ते को मुस्कान जरूर दीजिए। और इसी के साथ अनुमति चाहेंगे हम आज के इस कार्यक्रम से। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार के साथ प्रेम और विश्वास का रिश्ता हमेशा मजबूत रखिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई उमंग और नई प्रेरणा के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रोहतक केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और बिंदन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ. जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउत वितिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the Presidential

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।

0: टीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा,
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि परीक्षा के लिए फिर से कोई फीस नहीं ली जाएगी और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने कहा,
2: सीबीआई तहत तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, सरकार की पूरा नेतृत्व सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष से तो नेतृत्व उसके लेकर खुद दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है, हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, राजस्थान व पंजाब के सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव पंजाब व अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिमा बराड़ व मनोज त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा,
3: जो हमारा भाखड़ा डैम है उसके प्रबंधन के लिए ये संस्थान बना था 15 मई 1976 में, आज 15 मई 2026 ठीक 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 50 वर्ष पूरा होने पर 51वां स्थापना दिवस आज ये लोग मनाने के लिए एकत्र हुए और मुझे बुलाया गया, तो बहुत अच्छे प्रकार से जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, इस सारे प्रोजेक्ट के प्रबंधन की सराहना भी की।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। जो भी कमियां हैं उन्हें बोर्ड से परामर्श करके पूरा किया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें बीबीएमबी कर्मचारियों की मांगें मिली हैं, उन पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। अभी सिर्फ कैशलेस इलाज की घोषणा की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधन के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग का संदेश भी दिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल चंडीगढ़ में वॉकेथॉन का आयोजन करेगा। यह वॉकेथॉन सुबह 6 बजे सुखना लेक पर आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में मई माह में देशभर के केंद्रों में वॉकेथॉन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आकाशवाणी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। आज तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए सिरसा से विशेष रेलगाड़ी सिख श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह विशेष रेल हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
4: आज इस धरती पे सचखंड नांदेड़ साहब के लिए साढ़े श्रद्धालुओं का एक जत्था उत्थे तीस नवान ले जा रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े फखर की गल है।
0: जिला प्रशासन द्वारा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार की इस प्रयास के लिए प्रशंसा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर

0: सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ के मतदाताओं की अंतिम सूची इस वर्ष 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। तीसरे चरण के तहत SIR देशभर के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल हैं। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने कहा कि 614 बूथ स्तरीय अधिकारी 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर शहर के 5,18,000 और 663 मतदाताओं का विवरण इकट्ठा करना शुरू करेंगे।
1: पहला जो चरण है इसमें वो है हमारा ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का, और ये जो प्रिंटिंग का जो कार्य है ये हमारा 5 जून से लेके 14 जून तक ये कार्य होना है। उसके बाद एक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होनी है बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स, और ये एक महीने का समय है, 15/6 से लगभग 14 जुलाई तक का। उसके बाद क्योंकि हमारे को इसके हिसाब से पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज करना है ताकि हर पोलिंग स्टेशन पर 1200 से अधिक मतदाता ना हो, उससे कमी हो या अप टू 1200 मतदाता ही हो पोलिंग स्टेशन वाइज। उसके अलावा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है जो कि 21/7 को की जाएगी। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का लगभग एक माह का पीरियड है, 20 अगस्त तक का। उसके बाद फाइनली क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया जाएगा और 22/9 को फाइनल पब्लिकेशन की जाएगी।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR के माध्यम से पात्र और अपात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी।
1: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो, और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज है वो ना हो। जिन लोगों की पात्रता नहीं है उनको उसमें से हटाना है और जो पात्र है उनको उसमें लाना है।
0: हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रदर्शन एनीमिया को कम करने के प्रति राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 86.5 के AMB इंडेक्स के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा 5वें स्थान पर था, जिससे इस वर्ष की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि बहुआयामी रणनीति का परिणाम है। AMB स्कोर कार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 2 सप्ताह से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारी कल काम पर लौट आए। ये कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर थे। इसी के साथ अग्निशमन विभाग के हड़ताली कर्मचारी भी काम पर लौट आए हैं। प्रदेश सरकार के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, BBMB कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 10 से लेकर 12 तक की व्याख्या। प्रस्तुति है डॉक्टर CDS कौशल की।
3: श्रोताओं सादर नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज से 3रे अध्याय के 10वें श्लोक से आप व्याख्या सुनेंगे।
4: सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्तिष्ठ कामधुक।
3: विधि ने प्रजा के साथ पहले यज्ञ को रच के कहा, पूरे करे यह सब मनोरथ, वृद्धि हो इससे महा, अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। गीता की जो शब्दावली है संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जो यज्ञ शब्द है संस्कृत के व्याकरण जानते हैं कि यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु। इसके तीन अर्थ हैं यज्ञ के। एक तो देव पूजा, अपने अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, आहुति डालते हैं, अग्नि के मुख से देवों को आहुति जाती है, सुगंधि फैलती है, सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर अंतरिक्ष तक जाती है, बीमारियों का नाश होता है और संगतिकरण, सब लोग मिलते हैं, परस्पर लोक संग्रह होता है, परस्पर मिलना, आपस में एक दूसरे को जानना, पहचानना, एक दूसरे से प्यार करना, सेवा भाव रखना, सहयोग भाव रखना, ये यज्ञ का अर्थ है। और दान देना, देने की भावना, यज्ञ भावना, देने की भावना, परोपकार की भावना। तो इन तीनों अर्थों में समझ करके हम इसके मर्म को जान सकते हैं। भारतीय संस्कृति यज्ञमयी संस्कृति है। यज्ञ का अर्थ है अपने इष्ट देव का स्मरण, पूजन, सत्संग, दान आदि, सत्कर्म करना, परोपकार, कर्तव्य पालन, यह सब भाव यज्ञ से अभीष्ट हैं। भगवान प्रजापति का मानव जाति पर यह शुभ उपदेश व आशीर्वाद है कि यज्ञ से सबका उत्थान सुनिश्चित है। यज्ञ से ही सबकी सब आवश्यकता सहज रूप से पूर्ण होती ही है। अब स्वार्थ से उठकर दूसरों का भी सब ध्यान रखें तो किसी को भी कोई अभाव व समस्या ना रहे। सहयोग की भावना ही तो यज्ञीय भावना है। हर किसी को हर किसी के पास जाना चाहिए, चाहे कोई काम ना हो फिर भी आना चाहिए। घर में ही घुटते रहोगे क्यों बने कुआं मंडूक, हमको तो बाहर निकलने का बहाना चाहिए। गीता आपको समाज से जोड़ती है, अपने सत्कर्म से जोड़ती है और समरसता की ओर ले जाती है। यही गीता के तत्व ज्ञान की विशेषता है। लोग समझते हैं कि गीता युद्ध करवा रही है, युद्ध से शांति का संदेश है। और युद्ध किससे करना है? बुराइयों से करना है, अपनी आंतरिक बुराइयों से, अपनी बाहरी बुराइयों से। समाज के अंदर बुराई क्यों ज्यादा दिखाई देती है? सज्जनों की निष्क्रियता से ये सारी समस्याएं हैं। तो यदि सज्जन सक्रिय हो जाएंगे तो अपने आप हर समस्या का समाधान संभव है। तो यज्ञ अग्निहोत्र आदि से देवों को प्रसन्न किया जाता है। आज भी दीप जलाया जाता है, दीप जलाना बड़ा मांगलिक है, यही भारतीय संस्कृति है। समय पर वृष्टि होती है, वृष्टि से धन धान्य होता है, सर्वत्र समृद्धि हो जाती है, यह चक्र अबाध चलता रहे। हम अपना कर्तव्य पालन करें और फिर प्रकृति की कृपा हम पर बरसे। अपने अपने वर्ण आश्रम स्वभाव के अनुसार सब लोग यज्ञ, दान, तप, योग, प्राणायाम, संयम, स्वाध्याय, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवादि कार्यों में सोत्साह तत्पर रहेंगे तो किसी प्रकार का अभाव रह ही नहीं सकता। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता में तो बहुत ही प्यारे ढंग से, मैं तो कहता हूँ गीता एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ है जिसके अंदर बहुत ही सरल ढंग से महानतम उपदेश वेदों, उपनिषदों, पुराणों का सब का तत्व ज्ञान इसके अंदर है। मख से करो तुम तुष्ट सुरगण, वे करे तुमको सदा, ऐसे परस्पर तुष्ट हो कल्याण पाओ सर्वदा। जब तक हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक कैसे कल्याण होगा? कोई व्यक्ति अकेला रह करके कहे कि मैं परम सुखी हूं तो यह सब भ्रांति है, वो निराशा में आ जाएगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अर्थात परोपकार सहयोग के द्वारा सबको उन्नत करो और वो देव भी तुमको वृष्टि से उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। सामान्य रूप से यज्ञ का भाव अग्निहोत्र आदि लिया जाता है। अग्नि कुंड में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को हविष्य दिया जाता है। आहुति द्वारा अंतरिक्ष तक सर्वत्र सुगंध व सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया जाता है। उसको उपलक्षण बनाकर अपने कर्तव्य पालन रूप धर्म को सदा निर्वाह करने की ही प्रेरणा दी गई है। इष्टान भोगान्निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। मख तृप्त हो सुर कामना पूरी करेंगे नित्य ही, उनको दिया उनको न दे जो भोगता तस्कर वही। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देव तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। चोर कौन है? वो चोरी नहीं जो सिर्फ चोरी करता है, चोर वो भी है जो दूसरे का भाग उसे नहीं देता। यदि आप अपने परिश्रम से धन अर्जित नहीं करते हैं तो भी आप चोरी हैं, यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो भी आप चोरी हैं। गीता का जो तत्व ज्ञान है वो इतना सूक्ष्म है, इतना गुह्य है, यदि हम उसको समझें तभी हम उसके मर्म को जान सकते हैं, हमारे चिंतन में सुधार हो सकता है, हमारे आचरण में कुछ संस्कार डल सकते हैं। सृष्टि के आदि काल से ही प्रभु ने प्रकृति के द्वारा मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबंध किया हुआ है। सभी प्राणी औषधादि उसी प्रकृति से पोषित हैं। हम सब पर प्रकृति देव का ऋण है। इस देव ऋण को चुकाने के लिए हमें भी यज्ञादि कार्य परोपकार आदि करने चाहिए। यदि अर्पण किए बिना सब सामग्री अपने लिए ही प्रयोग में लाई जाए तो यह कृतज्ञता है, चोर कृत्य है। माता पिता की संस्कारित संतान तो बड़ा होने पर उनकी सेवा शुश्रूषा करके ऋण से उऋण होने का प्रयास करती है। उपकार पाया हुआ मनुष्य भी यदि प्रत्युपकार नहीं करता तो वह चोर ही तो हुआ। उस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना संपूर्ण वायुमंडल को पुष्ट करना ही तो है। इसी तरह स्वकर्तव्य पालन करते हुए ऋषि पितृ जन मनुष्य पशु पक्षी की रक्षा करना, उसको सुख पहुंचाना भी अभीष्ट है। जब मानव के द्वारा अन्य सब पुष्ट होंगे तो स्वतः मानव के भी पुष्टि के लिए सर्वत्र अनुकूलता ही हो जाएगी। जंगल की रक्षा करनी है तो जंगल के प्राणियों की रक्षा करनी पड़ेगी, मानव की रक्षा करनी है तो जंगल की रक्षा करनी है, जंगल की रक्षा करनी है तो जंगल के शेर की भी रक्षा करनी है, हर प्राणी की रक्षा करनी है, क्योंकि सब अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को पुष्ट करें। पुमान पुमानसम परिपातु विश्वतः, वेद का संदेश है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रक्षण करे, ध्यान रखे। मानव प्रकृति व देवों को पुष्ट करेगा तो प्रकृति व देव मानव को पुष्ट करेंगे, मानव प्रदूषण करेगा तो प्रकृति देव भी रुष्ट हो जाएंगे। अत्यधिक प्रदूषण का परिणाम ही तो अत्यधिक गर्मी, ग्लेशियर पिघलना, अत्यधिक बाढ़ें और सर्वत्र विनाश का मंजर, ये दिखाई दे रहा है, सबको चिंता हो रही है। अब मानव अपने कर्तव्य को समझे, शास्त्र तो बार बार चेतावनी दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, अब आवश्यकता है पालन करने की। ये पर्यावरण चेतना के संदेश नहीं समझेंगे तो विनाश लीला रुक नहीं सकती। सार्थकता इसी में है कि हम युद्ध स्तर पर सच्चे कर्मयोगी बने, इन बातों को स्वधर्म मानकर पालन करें। परंपरागत आदान प्रदान से ही सृष्टि चक्र अबाध गति से चलता है। सब देवों से भोग प्राप्त कर उनका धन्यवादी होना ही मानव सभ्यता का संस्कार है। वेदों ने बहुत ही सरल संदेश दिया है, मनुर्भव, कि आप इंसान बने। और मनु कहते उसे हैं जो मननशील है, चिंतनशील है, हर विचार को अच्छी प्रकार से ऊहापोह पूर्वक समझना और उसके अनुसार मंथन करते हुए आचरण में लाना, समाज हित में सोचना। और इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है। यदि मानव सबका ध्यान रखेगा तो उसका भी रक्षण परिवर्धन अवश्य होगा, उसके जीवन की सार्थकता होगी। हम सबका जीवन सार्थक बने, गीता तत्व ज्ञान का यही निर्देश संदेश पुनः पुनः प्रसारित किया जा रहा है। आज गीता संदेश कार्यक्रम में आपने गीता के तीसरे अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें इन 3 श्लोकों की व्याख्या सुनी। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज प्रस्तुति थी डॉक्टर CDS कौशल की। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अन्नदाता।

0: कार्यक्रम अन्नदाता सुननीय सारे बन भाई ने चतुर भाई के उड़ते राम राम भाई। मौसम की अगर बात करें तो इस टाइम पे अगर आप देखने लग रहे हैं तो मौसम में काफ़ी गर्माहट आ रही है और बीच बीच में मड़ा मी बूंदी का भी टाइम हो जाए है और थोड़ा हा पारा जो है जो ऊपर चढ़ जाए है वो थोड़ा हा तले न भी आ जाए। और कई बार तो इतना तापमान बढ़ जाए है कि त्राहिमाम जो है वो मचा दे। लेकिन भाई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम भी अपने अनुसार जो कुदरत है सृष्टि है प्रकृति है वो अपने आप चलावे। और गर्मी है तो इस टाइम पे खरबूजे तरबूज और आम भी खाने मिल जाए और जब गर्मी नहीं होगी तो फिर कितना हम खावांगे। गेहूं की कटाई हो ली है, भैया ने कोठड़े अपना भर लिए हैं, तूड़े के कूप ला दिए हैं और इसके साथ साथ नई फसलों का भी कुछ भाई अपना उन्होंने बिजाई कर दी है। खास तौर पर जिन भैया के खेत खाली हैं वो भाई इस टाइम पर ढेंचा लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ भैया ने जो धान है उसकी पनीरी भी लगा ली होगी। और लेकिन धान की पनीरी जब आप लगा रहे हैं तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि मड़ा ऊंचे ही पे पनीरी लगाएं ताकि बारिश हो जाए मी बूंदी घनी आ जाए तो जो पनीरी आपने लगाई है वह डूबे नहीं। इसलिए थोड़ा डूंग की बजाय मड़ा बेड को थोड़ा ऊंचा करके रखें। और इसके साथ साथ भाई पशु पसेरे का भी ध्यान रखना है क्योंकि पशु भी जरूरी है क्योंकि फिर अगर पशु नहीं होंगे तो दूध कड़त पियोगे, तो पशुओं का भी ध्यान रखना है। और 15 से 16 लीटर या 20 लीटर पानी जो है एक दिन में अपने पशु को 2 बाल्टी ला लो, अमूमन 3 बाल्टी ला लो, यानी कि ताज़ा पानी। न्यू नहीं कि भाई धूप में धरा हुआ पानी, गर्म पानी अगर आप अपने पशु को पियाओगे तो पशु बीमार भी हो सका है। इसके साथ साथ अगर पशु न्यार नहीं खा रहा है, पशु जुगाड़ी नहीं कर रहा है तो न्यू सोच लो कोई ना कोई पशु का गड़बड़ है। और इस बात पशु की आँखें में तो कई बार पानी भी आने लग जाए है और पशु जो है न्यार फूस भी जो है वो नाड़ मार के खाओगा क्या तो खाओगा ही नहीं। तो ये इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है कि पशु अगर आपका चारा नहीं चर रहा है चाहे आप उसने क्या में बढ़ो रहे हो चाहे आटा ला रहे हो चाहे कुछ और ला रहे हो लेकिन पशु जो फिर भी नहीं मानता तो इसका मतलब पशु के दिक्कत है। अपना नज़दीक का जो भी पशुओं वाला अस्पताल है डांगरा वाला अस्पताल है उसमें जाकर जो अपने डॉक्टर साहिबान हैं उनसे आप संपर्क करके और आप अपने पशु की जांच करवा सकें। कई बार पशुओं के दस्त भी लाग जाए इन दिनों में तो क्योंकि गर्मी के कारण है तो उसका भी उससे भी अपने पशु को बचाना है और अपना जो भी आपने सलाह मशवरा करना है वो अपने डॉक्टर साहबान से कर सकें। और इसके साथ साथ वही जो ज्ञापन पशु हैं और चाहे वो गाय हैं चाहे वो भैंस हैं उनकी भी देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी हो जाए क्योंकि अगर पशु नए दूध हो गया है और पशु की सही देखभाल हमने नहीं रखी तो भी दिक्कत आ जाएगी क्योंकि और दूध देने वाला जो पशु है उसका रख रखाव भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर देसी दवाइयों की अगर हम बात करें जो हम आम अपने खाने में खावा हाँ हम तो खा ले हैं, जीरा है, आमचूर है, लाल मिर्च है, इस तरह का अपना स्वाद बनाकर हम खा लें। लेकिन अगर हम जो दूध देने वाले पशु हैं उनको यानी कि ब्याने के बाद पशु की बच्चेदानी की जो सफाई है, ताकि पशु जेर जो है वो पूरी तरह से काट दे। और एक काढ़ा जो है बड़े बुजुर्ग बनाया करते, वो काढ़ा के है, उसमें अजवाइन जो है 25 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, काला नून 25 ग्राम, मेथी 25 ग्राम, सोया 25 ग्राम, और भाई सौंठ जो सूखी हुई अदरक है वह 25 ग्राम, गुड़ जो है वो हमने 250 ग्राम लेना है, और पानी लेना है 2 लीटर। इसका इसको हमने एक जब पानी आधा रह जाए तो इसको आँच पे तार के और इसका एक कपड़ छाणहा करके और उसके बाद जो है अपने पशु को हम पिला सके। यानी कि जब बच्चा पैदा होने के 6 से 8 घंटे तक अगर पशु जेर नहीं गेरता तो अपने पशु चिकित्सक से जो डंगराला अस्पताल है उसमें जाकर जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनसे संपर्क जरूर कर ले, क्योंकि पहले हफ्ते में पशु को बढ़िया चारा देना बहुत जरूरी हो जाए और दूसरे हफ्ते में पशु को थोड़ा राशन देना शुरू कर देना चाहिए और तीसरे हफ्ते में पशु को अपना संतुलित राशन जो बतावे हैं चूरी है खड़ है बिनोला है वो हम अपने पशु को देना शुरू कर दें। और गाय की अगर बात करें तो भाई 3 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम दाना और भैंस को हमने 2.5 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम दाना जरूरी हो जाए। और इसके साथ साथ भाई जो हम खनिज लवण हैं मिनरल मिक्सचर हैं वो भी अपने पशु को टाइम टाइम पे देना जरूरी हो जाए। साधारण नमक जो हम अपने खाने में खावा हाँ वो साधारण नमक 50 ग्राम अपने पशु के चारे में जरूर मिला दें। और कई भाई तो अपना जो है एक नून का डला जिसने सेंधा नून कह दे हैं डला ठा कर अपना खोर में धर दे हैं और पशु का जब जी चाहो अपना चाट ले, नहीं जी वहाँ अपना बैठ जाए। खोर को साफ रखना बहुत जरूरी है। ये तो बात रही भाई पशुओं के बारे में और खेत क्यार के बारे में। अब बात कर लें कि जो खेत में हम यांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो ट्रैक्टर है चाहे कोई मशीन है, उनका हमने क्योंकि वो पानी तक तो चलती नहीं, चलेंगे तो तेल तय, तो उन मशीनों में तेल की कैसे हमने बचत करनी है इसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो भैया क्योंकि खेत में हम जो अपना खेतों में जो मशीनों से काम कर रहे हैं तो उसमें जो तेल है वो बहुत ज़्यादा कई बार खपत करन लग जाए मशीन, और तेल के दाम जो है आप जानो हो कि दिन पर दिन बढ़ते जान लाग रहे हैं और कल परसों भी तेल के दाम जो है वो बढ़े हैं और हमने तेल की बचत जो है वो हमने करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश है। और ऐसे में जो किसान भाई है वो ट्रैक्टर और इंजनों में जो डीजल की जो खपत कर रहे हैं तो भैया उनका हम थोड़ा ध्यान अपने मशीनरी का ध्यान रखें तो हम तेल की खपत जो है वो उनसे कम कर सकें। भैया हर ट्रैक्टर में जो इंजन बनावे हैं जो भी कारखाने तो नए इंजन के साथ एक छोटी सी किताब भी देवे हैं और उस किताब को हम नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बढ़िया ट्रैक्टर चलावे हैं, अच्छे तरीके उसकी मरम्मत करवावे हैं, सब कुछ करवावे हैं, लेकिन हर कारखाना जो भी निर्माता है नई मशीन बनाओगा तो उसमें कोई ना कोई अपनी मशीनरी को ज़्यादा उत्पादन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ कोई नया सिस्टम जोड़ते हैं। तो इसलिए जब भी आप नया ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं तो एक बार वह जो दिशा निर्देश की जो पुस्तक कह दें, जिसने जो किताब है, उस किताब को एक बार पढ़ जरूर लेनी चाहिए, ताकि हमने पता लग जाए कि मशीन में जो कौन कौन सी कोई नई ऐसी तकनीक तो नहीं जोड़ दी है जिसका कि हमने पता ही नहीं। इतना हमने पता लग गया, इतना तो मशीन जो है वो खराब हो ले। तो इसलिए जो भी किताब हो उसको पढ़ना जरूरी हो जाए। और इंजन को चालू करने के टाइम पे उसका जो टैपर है और उसको उसमें जो रोला सुनाई दे है, शोर सुनाई दे है, तो इसका मतलब है कि इंजन के अंदर हवा कम जा रही है, जिसके कारण जो है इंजन की खपत, इंजन में जो डीजल है उसकी खपत बढ़ जाएगी। इसलिए जो टैपित है उसकी आवाज आने पे ही फिर उसको हमने बंदवाना चाहिए। और इसी तरह से इंजन को हमने टाइम टाइम पे उसका रख रखाव रखना बहुत जरूरी है। तेल पानी जरूरी चेक कराना है, जब जब उसकी सर्विस हो तो उस हिसाब से ही अपने जो नज़दीक का जहाँ भी अपना मरम्मत होती हो तो अपना नज़दीक के जो भी वर्कशॉप है उसमें जाकर मरम्मत जरूर करवा। ट्रैक्टर के जो पहिए हैं उनमें हवा सही रखें, क्योंकि हवा का दबाव अगर कम होगा तो भी ट्रैक्टर डीजल जो है वो ज़्यादा खाओगा। इसलिए हमने इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। और ये भी देखना है कि भाई कहीं से कोई ट्यूब कट तो नहीं रही है, फट तो नहीं रही है, क्योंकि अगर इस तरह से ट्यूब अगर कटेगी तो टोपा टोपा जो तेल है वो रिसता रहेगा और उसके कारण जो डीजल है उसकी खपत ट्रैक्टर में ज़्यादा हो जाएगी और वो डीजल व्यर्थ चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये तो रही बात ट्रैक्टर के रखरखाव की। और अब सुनते हैं एक संदेश, और ये संदेश वायु यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप तक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की एक चौथाई से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
0: तो भैया ये तो सुना हमने संदेश। और अब मौसम की बात करें, तापमान की बात करें, तो भैया आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और कल के तापमान का अनुमान है कि कल अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और इसके साथ साथ मौसम भी साफ रहेगा। रही बात कल के कार्यक्रम की, तो वही कल शनिवार है और कल हम अपने कार्यक्रम में लेकर आऊँगे कृषि में भूमिगत सिंचाई का महत्व, और इसके साथ साथ हम आज की नसीहत में आपसे बातचीत करेंगे बेर के बागों की देखभाल कैसे करनी है। तो ये तो रही कल के कार्यक्रम की बात। और अब बात आवे है क्या कि मनोरंजन की, तो आइए सुनते हैं एक रागनी और उसके बाद कार्यक्रम में जिक्र करेंगे। और

तवैये तो सुनी हमने रागनी भजन के रूप में, और अब बात करें भाई दलहनी फसल के बारे में, क्योंकि भाई दलहनी फसल जो इस टाइम पे हम लगाएंगे वो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अरहर की, और भाई अरहर की जो फसल है वो इस टाइम पे हम लगा सके हैं क्योंकि ये मौसम जो है वो सही चल रहा है कि अरहर की जो बिजाई है वो हमने इस टाइम पे करनी है, क्योंकि जिन भाइयों के खेत खाली है। और दूसरी बात यह है कि भाई जो इस तरह की दलहन वाली जो फसलें हैं उसको अगर हम अभी से अपने खेत में लगा देंगे तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो खेत में पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो हवा से नाइट्रोजन लेकर ये पौधे जो हैं और जो इनके जड़ों के अंदर गांठे हुए हैं उन गांठों से नाइट्रोजन को बदलते हैं, और वो नाइट्रोजन जो है वो खाद के रूप में खेती में खेत में मिल जाए। और ज़्यादा पैदावार देने वाली फसल है और खेती को जो है हम खेत में जो पोषक तत्व हैं उनको पूरा करने के लिए भी हम अरहर को लगा सके हैं। और रही बात किस्मों की, तो वायु किस्मों में कई तरह की जो किस्में हैं वो बहुत बढ़िया किस्में मानी गई हैं, और इसमें एक किस्म है UPAS 120 अरहर की, बहुत बढ़िया किस्म है, दरमियानी है, लंबी है और 130 से 140 दिन में पक्कर तैयार हो जाए, और सीमित बढ़वार वाली नहीं है और फूल आने के टाइम पे काफ़ी लंबी हो जाए, और इसकी जो शाखाएं हैं वो काफ़ी लंबी हो जाएं और पकने के बाद झुक जाएं। इनमें फलियां जो है पूरी टहनी पे लग गए हैं और औसत पैदावार लगभग जो है वो 6 क्विंटल एक एकड़ तक हमने पैदावार अरहर की मिल जाए। पारस यह किस्म भी बहुत बढ़िया है, और यह किस्म जो है इसने हम H82 के नाम तक भी जाना है, और इस किस्म की अरहर की जो किस्म की इसकी लंबाई जो है वो दरमियानी हो है, बढ़वार जो है बढ़िया हो है और अर्ध फैलावर आधे पेड़ के ऊपर जो है फैली रहे है, और ये इस किस्म में फलियां और फल जो है वो टहनी है उनमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए। और पछेती जो बिजाई है वो हम 4 जुलाई तक भी कर सके हैं, और पकने की जो टाइम है इसका वो लगभग जो है 135 से 140 दिन में पक्कर तैयार हो जाए। पैदावार की बात करें तो लगभग 6 से 7 टन पैदावार जो है वो हमने एक उससे मिल जाए। बिजाई का जो समय है वो इस टाइम चल रहा है, लेकिन मार्च से जुलाई के पहले हफ्ते में बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पारस किस्में है पारस किस्म है वो उसको हम जून से लेकर जुलाई के बिचाले तक भी बो सके हैं, यानी कि पानी के ऊपर जो निर्भर क्षेत्र हैं जिन भाइयों द्वारा पानी की कमी है तो वो पानी बारिश के पानी पर मानसून आने पर भी इसकी बिजाई कर सके हैं, और यानी कि मानसून के टाइम पर अच्छा पानी इन्हें मिल जाएगा। और सारी जो है सिफारिशशुदा किस्में हैं उनकी बिजाई हम कर सकें, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है राइजोबियम का जो टीका है उससे बीज का उपचार करके जरूर अपने फसल को बोएं। और बीज की मात्रा की बात करें तो वही जो सिफारिशशुदा किस्में हैं वो लैनों में बोनी है, और लैन से लैन का जो फासला रखना है वो रखना है 40 सेंटीमीटर। 5 से 6 किलो बीज एक एकड़ के लिए अरहर के लिए काफ़ी रहेगा। और टाइम पे पकने वाली और जो मिलमा फसल है उसकी अगर लैनों का फासला वो हम 50 सेंटीमीटर भी रख सके, निराई गुड़ाई जो है वो 25 से 45 दिन में कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और सिंचाई की बात करें पानीपात की बात करें तो हो सके तो फल आने पे एक सिंचाई जरूर कर दें।
कीड़ा का भी हमने प्रकोप देखने न मिल जाए कई बार, तो इसलिए अरहर की फसल में जब 50% फली आ जाए तो उसमें हमने जो दवाइयाँ हैं उनका बड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना है। यानी कि क्विनल फास ला लो चाहे मोनोक्रोटो फास लगा लो। मोनोक्रोटो फास 25 cc की ताकत आड़ी लेनी है, वो लेनी है 600 मिलीलीटर, और 300 मिलीलीटर हमने लेनी है मोनोक्रोटोफास। दोनों दवाई मिला के बिल्कुल भी नहीं इसकी भी वो काम में लेना है। एक दवाई और उसमें जो पानी की मात्रा है वो लगभग 300 लीटर पानी हमने इसमें मिला के और छिड़काव करना है अगर कीड़े हो गए हैं तो, नहीं तो भाई अपना जो अपना नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर भी आप बातचीत कर सके हैं जो वहाँ डॉक्टर साहिबान बैठे हैं। और थोड़ी सी बात कर लें भाई प्राकृतिक खेती के बारे में, तो भाई प्राकृतिक खेती का भी हमने थोड़ा ध्यान रखना जरूरी हो जाए। और ऐसे में अगर हम एक हांडी काथ जिसने हम कहते हैं हांडी काथ बहुत बढ़िया दवाई है, और हांडी काथ जो है ये दवाई देसी जड़ी बूटी जो मरी हैं उनसे हम मिला के और कीड़ों के ऊपर हम नियंत्रण कर सके हैं। और इसमें जो सामग्री हमने लेनी है वो लेनी है 1 किलो देसी गाय का गोबर, 4 लीटर देसी गाय का मूत्र, नीम की पत्तियां 1 किलो और 1 किलो शरीफा और 1 किलो करंज के बीज, और वही 1 किलो तंबाकू की पत्ती, 1 किलो पोटस और गुड़ लेना है 50 ग्राम और 1 मुट्ठी डिम काली माटी। तो भाई ये एक ऐसी दवा बन जाएगी तो जिससे कि हम अपना जो कीड़े हैं मकोड़े हैं उनके ऊपर हम निगरानी कर सके हैं, और उनके ऊपर अगर हमने इस दवाई का इस्तेमाल कर दिया तो दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम तैयार करके 100 मिलीलीटर कात को 5 लीटर पानी में मिला कर फसल के ऊपर स्प्रे कर दें तो पौधे हमारे स्वस्थ रहेंगे और कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हम अपने जो प्राकृतिक कीटनाशी दवा है हांडी कात उसको बना के और इसका इस्तेमाल हम करें तो पौधों के कीड़ों के ऊपर हम नियंत्रण कर सकें, क्योंकि रासायनिक दवाइयां जो हैं जितनी हम कम से कम इस्तेमाल करें तो भाई वो अच्छा रहेगा। और अब घड़ी भी कह रही है कि चतुर्भाई कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो भाइयों से ले अनुमति। तो अच्छा भाइयों, राम राम, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी।

हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुननीय सारे बण भाइया ने एक बार फिर चतुर्भाई की ओरते राम राम भाई। कार्यक्रम में आज बातचीत हम करेंगे कुणबे की। कुणबे की बात क्यों कर करेंगे, उसकी बातचीत करेंगे थोड़ा सा डट के। पहले सुनते हैं संदेश, और संदेश ये संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप तक।
1: न्याय यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
0: तो भैया ये तो सुना हमने संदेश और मनोरंजन कर लिया पहले। तो पहले करते हैं भाई, करवाते हैं भैया का मनोरंजन एक रागनी के गैल, लेकिन थोड़ा सा डट गए।

बड़ा गंदा गला गड़ा

ਬੇਟਾ ਪੂਰਨ ਸੈ ਨਿਰਦੋ ਬਾਜੇ ਭਗਤ ਹੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਉਸ ਨ ਬੋਲੀ ਉੜੇ ਉਸ ਚੜ

तो भाइयों ये तो सुनी हमने रागनी, और आज तारीख 15 मई, और आज का दिन एक विशेष दिन है। हम लोग कहोगे कि वो विशेष दिन बिरानी कौन सा विशेष दिन, विशेष दिन यो है कुंभ वाला दिन, ये कुंभ का दिन। भाई आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो मनाने की घोषणा करी थी। और परिवार का महत्व तो आप जानो हो कि भाई परिवार एक ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ हम सब बंधे हुए हैं, और उस धुरी के बीच में जो हमने चारों तरफ जो है घूमे हैं हम उस धुरी के, तो वो है हमारा परिवार। अगर परिवार के अंदर एक जुटता ना हो तो बड़ी दिक्कत आ, कोई कैसा, लेकिन परिवार वही है जिस परिवार के अंदर हम एक दूसरे को प्यार से, एक दूसरे की मदद से और एक दूसरे के भावनाओं से हम ऊपर उठे। परिवार के अंदर माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ दादा, ये एक परिवार है, और ये एक परिवार जब धुरी के अंदर बंधे है, एक परिवार एक लाश में बंधे है, तो उसका मजा ही कुछ और हो। अगर हम इस बात को अगर इस तरीके से कहें कि कोई अगर एक लकड़ी छोटी ही लकड़ी उठा कर तोड़ दे और वही लकड़ियां हम एक गट्ठड़ में बांध गए और फिर उस गट्ठड़ को तोड़े, तो क्या वो गट्ठड़ टूटेगा? नहीं टूटेगा। और यही परिवार की बात है। अगर परिवार में एकलास है, एक परिवार के अंदर एक हम एक जुटता है, परिवार के अंदर जो विचार हैं वो मिलते हैं, तो वो परिवार

एक ऐसा परिवार है जो हम उस परिवार को एक सभ्य परिवार बोलते हैं। अब उस परिवार का क्या कि भाई एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की हौसला अफजाई ना करके एक दूसरे का मनोबल गिरा तो वो बहुत ही खतरनाक है। आपने देखा होगा कि अभी जो 10वीं का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परिवार के अंदर रहे भी होंगे, जिनके नंबर कम आए होंगे, तो वो आपस में जो उनका मनोबल गिरा के वो परिवार के अंदर कई कह देते रहे तो इतने नंबर कम आए तो तना और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। लेकिन जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आए तो वो बच्चे उन बच्चों को शाबाशी भी मिली और उन्होंने अपना पूरा समय जो है वो शिक्षा के अंदर पढ़ाई के अंदर व्यतीत करा बढ़ाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ गए हैं तो उसको मानसिक दृष्टि से मानसिक तौर से या शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जाए, नहीं ऐसा नहीं। उसको और बढ़ाओ, बेटे इस बार थोड़े कम नंबर आए हैं, अगली बार थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो और ज़्यादा अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। तो ये एक मनोबल बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, मनोबल जो है परिवार ही बढ़ा सकता है। तो इसलिए आज विश्व भर के अंदर इस दिन को जो है स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जो है बहुत सारी जो सभाएं हैं, सेमिनारें हैं, प्रदर्शनियां हैं वो आयोजित करी गई। कार्यशालाओं में जो शैक्षणिक पहलू वो भी उस पे भी जो है नज़र डाली गई और बहुत अच्छे इसके परिणाम भी जो है वो आए हैं। और परिवार दुख में एक जुटता के अगर आपके साथ खड़ा है या कोई परिवार या किसी व्यापार में घाटा हो गया है तो उस समय भी अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो एक बहुत बड़ी बात है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 1989 को ये संकल्प जो है वो लिया था कि भाई, और 1993 में जो है राष्ट्र महासंघ ने ये संकल्प लिया और इस दिन को 15 मई को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित करा गया। तो परिवार तो वो एक ऐसी धुरी है कि जिस तरह से अगर उंगलियां अलग-अलग हैं, अगर उनको बंद करके एक मुट्ठी बना ली जाए तो उसकी ताकत कुछ और ही है। ये परिवार की ताकत है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और हम सब की यही कामना है पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, आप सभी के अंदर, आप सभी परिवार, सभी के परिवारों में एकजुटता जो है वो बनी रहे। और इसी तरह से वही आज एक और बात हम करें कि सामाजिक जागरूकता का आधुनिक जीवन शैली में क्या महत्व है। भाई सामाजिक जागरूकता की अगर बात करें और आजकल की जो आधुनिक जीवन की बात करें, क्योंकि आजकल का जो आधुनिक जीवन है वो बहुत ही आपाधापी का जीवन है, यानी कि हर घर के अंदर अगर आप देखो कि आज का जो समय है वो सब काम में लगे हुए हैं, चाहे बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सब काम में लगे हुए हैं। लेकिन आज परिवार की अगर बात करें तो आज एकल परिवार हो गया है। पहले संयुक्त परिवार होया करते, कट्ठा परिवार होया करता तो बच्चों का नू नहीं पता लग गया करे था कि किस टाइम बालक जो है बड़े हो गए, किसका हो गए कि नहीं, किस कोई किसी के घर जाकर सो रहा, कालू शाम में का जाकर सोन लाग रहा है, शाम में का छोरा कालू को घर सोन ला रहा है, कालू कालू के बालक बिरानी की था। तो एक ने गली में खड़े होकर एक ना आवाज मारा करते, 10 जने आया करें थे, और एक के चूल्हे के ऊपर एक जना रोटी खाओ था तो 10 जने उसके गिले बैठ कर और भी रोटी खा जाते, आ जा भाई तू भी आ जा तू भी आ। लेकिन आज आज का समय एकल परिवार हो गया है। एक डाठला हो है, एक डाठली हो है, उसने अपने वही नो सोचा बिरानी के तो बना दे के, तूने पढ़ना तू वहां क्यों गया, तो ये

क्यों करा? आजकल का जो समय है वो ऐसा समय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आजकल के माहौल में जो है बच्चे बहुत ही क्या करें कि दिमागदार हो गए हैं, उनको फ़ोन दे के देखो 2 मिनट में सब कुछ वो ये वो सब कुछ खोल कर रख देंगे, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो इसी तरह से है और जागरूकता की शिक्षा है। तो सामाजिक जो जागरूकता है तो आधुनिक जीवन के अंदर उसका बहुत ही महत्व है। और कितनी जो ऐसी ऐसी विद्याएं जो है वो हमारे पास आ गई हैं जिनका के हमें उस टाइम में पता भी नहीं था। तो इसलिए अपने जीवन में हमने जागरूकता जो है और बढ़ानी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे वो शारीरिक खेल के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में है, तो उसमें हमने अपनी भागीदारी देनी जरूरी है और यही समय की मांग है। और अब समय की मांग एक और है कि चतुर भाई चलते चलते भैया भाई मनोरंजन करा दें, तो भैया सुनते हैं आप सबका जाना पिछाना और सबका लोकप्रिय ये हरियाणवी फिल्म का गीत।

रवैया चंद्रावल के इस गीत के गिले आज का ग्राम संसार कार्यक्रम होया समाप्त। चतुर्भाई ने दो अनुमति, सब बण भाइया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिष्मा की ओर से। स्वागत है आप सभी का और खास तौर पर हमारे सैनिक भाइयों का, जिनकी वजह से हम हैं सुकून में, जिनकी वजह से हैं हम अपने कामों पर तैयार और अपने कामों पर हैं हम रत, जैसे कि वो अपनी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, या हम सभी की ड्यूटी है अपना थोड़ा थोड़ा सा काम अपने इस देश के लिए करना। और दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म शोले से किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ें, आनंद बख्शी की शब्द रचना, और जिसे लयबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रहिए कार्यक्रम में, अगला गीत सुनते हैं फिल्म दोस्ती से। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, आवाज मोहम्मद रफी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त तो होता है। जाते जाते उन सभी वीर सैनिकों को दिल से नमन जो दिन रात हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए सरहदों पर डटे हैं। उनकी बहादुरी, त्याग और देशभक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि जवान हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर है। और हम सभी अपने सैनिकों के सम्मान में हमेशा गर्व और कृतज्ञता का भाव रखें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ और देशभक्ति की भावना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें सुनते हैं आप सुगम संगीत पर आधारित गीत। तो आज आपका ये जो प्रिय कार्यक्रम है गुलदस्ता, जहां संगीत की हर खुशबू दिल को सुकून देगी, आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूफी संगीत, जो सिर्फ कानों को नहीं बल्कि रूह को भी छू सकता है। सूफी संगीत मोहब्बत, इंसानियत और ईश्वर से जुड़ाव का संदेश देता है। इसकी धुनों में एक ऐसी कशिश होती है जो मन को शांति और दिल को सुकून से भर देती है। तो तैयार हैं आप इश्क, एहसास और आध्यात्मिक रंगों से सजे इस खूबसूरत नगमों के सफर पर? आज आपके साथ है इस कार्यक्रम में आपके रेडियो दोस्त ज्योतिषमा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। तो करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस एक सूफी गीत के साथ।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।

अभी आप सुन रहे थे कुछ सूफी रचनाएं। कार्यक्रम था गुलदस्ता। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा से नमस्कार ज्योतिष माँ की ओर से। और दोस्तों, आज कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस वक्त कुछ बातें कुछ गीत। और आज का ये जो दिन है वो है विश्व परिवार दिवस। तो परिवार दोस्तों सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन की है सबसे बड़ी ताकत। और यही वह जगह है जहाँ हमें बिना किसी शर्त के प्यार, अपनापन और सुरक्षा मिलती है। एक इंसान चाहे जीवन में कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन दिन के अंत में उसे सुकून अपने परिवार के बीच ही नजर आता है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन, भाई बहनों की नोकझोंक और बड़ों का आशीर्वाद, यही रिश्ते हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। समाज की नींव भी परिवार से ही मजबूत होती है। अच्छे संस्कार, सम्मान, सहयोग और मानवता जैसे मूल्य हमें सबसे पहले अपने घर से ही सीखने को मिलते हैं। जब परिवार मजबूत होता है तो समाज भी मजबूत होता है। और आज की इस दौड़ती तेजी से भागती सी जिंदगी में भले ही लोग कितने ही व्यस्त हों, लेकिन रिश्तों की गर्माहट और अपनों का साथ आज भी जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। और ना सिर्फ आज, ये यकीन जानिए कि ये जो परिवार नाम का शब्द है ना, ये शायद पृथ्वी के कभी जब अंत होगा तब तक भी ये परिवार ही हमारे साथ होंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में परिवार और रिश्तों की मिठास को महसूस करेंगे कुछ दिल छू लेने वाले गीतों और कुछ बातों के साथ।

श्रोताओं, कहते हैं कि जीवन में अगर परिवार का साथ हो तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। परिवार केवल उनके रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, अपनापन और भावनाओं का वह सुंदर बंधन है जो हर परिस्थिति में हमें संभाल कर रखता है।

लेकिन कई बार अपने ही रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा दी हैं और ऐसे में जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने परिवार के लिए निकालें, साथ बैठें, बातें करें, हंसें और एक दूसरे को महसूस करें, क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा खुशी दौलत या शोहरत नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ देने में होती है। तो रिश्तों की इसी मिठास को एक खूबसूरत गीत के साथ आगे बढ़ाते हैं।

आज जब परिवार की बात हो रही है तो श्रोताओं भाई बहनों का जिक्र ना आए ऐसा नहीं हो सकता। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत और सच्चे रिश्तों में से एक माना जाता है। सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि प्यार, दोस्ती, तकरार और हर पल साथ निभाने का रिश्ता होता है। बचपन की शरारतें, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, एक दूसरे की चीज़ों को चुराना, छुपाना और फिर कुछ ही देर बाद साथ मिलकर हंसना, यही तो भाई बहन के रिश्ते की असली मिठास है। कई बार भाई एक दोस्त की तरह हर मुश्किल के साथ खड़ा रहता है तो बहन घर की मुस्कान और अपनापन बन जाती है। जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना आ जाए, लेकिन भाई बहन के साथ बिताए गए पल हमेशा दिल के सबसे करीब होते हैं। जब इंसान अकेला महसूस करता है तब यही वो रिश्ता है जो हमें हिम्मत और अपनापन देता है। रिश्तों की सबसे सुंदर बात यही होती है कि इनमें शब्द कम और भावनाएं या फीलिंग ज्यादा होती हैं। भाई बहन चाहे दूर हों लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आइए इसी से भाई के बारे में क्या कहते हैं ये अगले गीत में सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को। इसमें भाई और बहन देखते हैं क्या ही इनका अंदाज है बात करने का।

बोल मेरे गुड्डे ख्याल तेरा क्या है, तू भी कुछ कह दे सवाल तेरा क्या है।

0: खाना भी पकाना होगा, झाड़ू भी लगाना होगा, खाना भी पकाना होगा, मुन्ने को खिलाना होगा,
1: पाया मंगवाना होगा,
0: नहीं बाहों में झुलाना होगा,
1: झूला मंगवाना होगा,
0: पैर भी दबाना होगा,
1: सर पे बिठाना होगा,
0: अच्छा चक्की भी चलाना होगा,
1: मेले मेले जाना होगा,
0: मुन्ने को खिलाना होगा,
1: पाया मंगवाना होगा,
0: बाहों में झुलाना होगा,
1: झूला मंगवाना होगा,
0: पैर भी दबाना होगा,
1: सर पे बिठाना होगा,
0: चक्की भी चलाना होगा,
1: मेले मेले जाना होगा,
0: खाना भी पकाना होगा,
1: झूला दिलाना होगा,
0: झाड़ू भी लगाना होगा,
1: नखरे उठाना होगा।

दोस्तों जो ये गीत बज गया उसमें बचपन की प्यारी यादें जरूर ताजा की गई। वैसे भी भाई बहन का रिश्ता कहीं ना कहीं उन्हीं मासूम शरारतों और गुड्डे गुड़ियों जैसी खेलों से होकर ही गुजरता है और बचपन की वही छोटी छोटी नोकझोंक आगे चलकर खूबसूरत यादें बनती हैं। भाई बहन सिर्फ रिश्ते नहीं होते बल्कि जीवन के पहले दोस्त और हर खुशी गम के साथी होते हैं और उनकी मौजूदगी घर में अपनापन और मुस्कुराहट को बनाए रखती है। तो अब इसी प्यारे रिश्ते के नाम सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अश्रोता, परिवार में एक ऐसा रिश्ता भी होता है जो अक्सर कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाता है। दादा दादी और नाना नानी का रिश्ता, उनके स्नेह में एक अलग ही अपनापन और सुकून छुपा होता है। उनकी कहानियाँ, उनकी सीख और उनका आशीर्वाद घर को एक विशेष ही गर्माहट सी महसूस कराते हैं। बचपन में उनकी गोद शायद सबसे सुरक्षित जगह लगती थी। रात को सुनाई गई कहानियाँ, त्योहारों की रौनक और हर छोटी खुशी में उनका मुस्कुराता चेहरा, ये सब यादें जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। वे केवल परिवार के बड़े नहीं होते बल्कि अनुभव और संस्कारों की जीवित पाठशाला होते हैं। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में कई बार हम उनके साथ समय बिताना लगभग भूल सही जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनके आशीर्वाद से ही घर में खुशियाँ और बरकत बनी रहती है। तो अपने बड़ों के सम्मान और प्यार को समर्पित करते हुए कुछ कह भी सकते हैं, उनके साथ बैठ करके अपना समय गुजारिए, उनकी सुनिए और अपनी सुनाइए उनसे, उन्हें अच्छा लगेगा।

तो दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमारा आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करने जा रहे हैं। और विश्व परिवार दिवस के इस अवसर पर जो रिश्तों की मिठास है, अपनों के साथ और परिवार की अहमियत को महसूस करें आप सभी, ये छोटी छोटी कोशिशें हमें अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए ज़रूर करते रहने चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि यही रिश्ते हमारी असली ताकत होते हैं। खुशियाँ बांटने के लिए भी परिवार चाहिए और दुखों में सहारा देने के लिए भी परिवार ही सबसे पहले साथ खड़ा होता है। आइए अपने घर में प्यार, सम्मान और अपनापन बनाए रखें, ताकि रिश्तों की ये खूबसूरत सी डोर हमेशा मजबूत बनी रहे। और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना जो समय है वो प्यार और जो हमें आप देते रहते हैं, और अपने परिवार को भी आप वक्त दीजिए, उनकी अपने दिल की कहिए, उनकी बातें सुनिए, कुछ इधर से हो और कुछ उधर से, और कुछ इस तरीके का माहौल बना कर के रखिए कि सभी मुस्कुराते रहें, खुश रहें और रिश्तों की कद्र करते रहिए। इसी सब के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। और अब से कुछ ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार, तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया दिल्ली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा है। यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन

0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूल जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री बजेन्द्र शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि

0: पहली जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसल कर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य

0: ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं।
2: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
3: जरा मैं भी सुनूं।
2: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
3: तुमसे? नहीं,

0: लता मंगेशकर मनाडे की आवाजों में ये गीत चोरी चोरी फिल्म से आपने सुना, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

फिल्म जूली से ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यही समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

नवासी में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोलने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: धाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, धाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इस साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यह कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हो।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिष माँ की ओर से। स्वागत है आप सभी का। आपके इतने सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, अब किसका मैसेज सबसे पहले आएगा या खुलेगा वो देखते हैं। तो वो है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। अगला मैसेज हमारे पास है भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी और तानिया नारंग। हीरा वाली फाजिल का पंजाब से मैसेज पहुंचा है सुभाष गोदारा, भिमली गोदारा, इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा जी की ओर से। गांव फ्रांसी हिसार से है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। अगला फरमाइशी संदेश है शास्त्री नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोताओं का, संतोष भाकरे, सुकन्या, सुनैना और सविता भाकरे की ओर से ये मैसेज आया है। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण चौहान और साथ हैं प्रतीक चौहान। गुलाम ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां का मैसेज है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अगला फरमाइशी मैसेज है हमारे पास बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के श्रोता है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और प्रकाश मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा की फरमाइश पहुंची है। रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान के श्रोता। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, तरुणा भगत, चेतन भगत और साथ हैं सुलोचना भगत। और आप सबने सुना चाहा है मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म है जानवर, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम में अगला गीत है आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सनावत से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोडाना का मैसेज पहुंचा है। और अगला मैसेज है हमारे पास सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और साथ हैं सोनम वर्मा। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम और बेबी वामिका और वाणी थांदी का मैसेज पहुंचा है। टोरोवाल नवा शहर पंजाब के हैं आप सभी श्रोता। फाजिल का पंजाब से है खेड़ा परिवार जिसमें शामिल है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी खेड़ा, शारिणी, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। छत्रपति संभाजी नगर से फरमाइश पहुंची है राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, राजेश और शीतल राजेश की ओर से। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं सुदर्शन।

शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। अगला फरमाइशी मैसेज है हमारे पास रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं। प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। अगले मैसेज को पहुंचाया है आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मंडी, सौरभ, साइना शर्मा और साथ हैं निवान शर्मा। रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल की फरमाइश पहुंची है। शिरडी से हैं सुरेश मालोदे, वर्षा, श्रद्धा और मानसी मालोदे। मधुबनी बिहार से फरमाइश पहुंची है मोहम्मद साबिर परवाना, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद जाहिद अली और मोहम्मद शाहिद अली। अगला मैसेज है जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान की फरमाइश आई है। आर्य नगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष जंगेल और साथ हैं नंदिनी जंगेल। और आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को, फिल्म है पड़ोसन, गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

भाई बद्दूर, भाई बद्दूर, अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बद्दूर, भाई बद्दूर।

अगले गीत की ओर बढ़ें तो इसे सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। गमहरी या जमशेदपुर से हैं रोहन और आर्य। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू देवंती जयसवाल। बबूरी बाजार चंदौली से विजय सरोज। चकिया बाजार चंदौली से ही हैं सुमन और सुंदर जयसवाल। मजनू कटीला दिल्ली से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर। और सतना मध्य प्रदेश से उमंग आकांक्षा और माही मलिक का मैसेज पहुंचा है। गांव लसूड़िया बाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, मुस्कान, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा और आजमीन गुड़िया की फरमाइश पहुंची है। पजौनिया जिला जालौन से हैं सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश आई है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा की ओर से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से होम प्रकाश रॉय, उषा रॉय और अमित कुमार रॉय और साथ हैं हैप्पी रॉय। दुबीहा नेवादा वाजिरा गाजीपुर से हैं प्रतीक रॉय, रोशनी और प्रांजल रॉय। नाज मंजिल महसौ सीतामणी से फरमाइश पहुंची अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना, आरिज नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा। कुवात बिहार से हैं शेख जफर हसन और नरगिस जफर। अगला मैसेज है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। छोटी बलिया मुंबई करजत से हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले। कॉपर सीढ़िया बॉर्डर नई दिल्ली से हैं आसमा, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंताशा, आशु अहमद फूलवाले। लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद, राइन अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार। और आप सभी ने सुनना चाहा है गीत अदत की आवाज़ में फिल्म भाई भाई का गीत। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना और संगीत है मदन मोहन का।

नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नुहाकर, निर्मला और विशाल नुहाकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुहरकर मुरहेकर। गांव जगुड़ी, जिला यमुनानगर से हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन और मनराज। सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा संधू और मैक्स का मैसेज पहुंचा है गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से। अगला मैसेज है हमारे पास सूर्य नगरी जोधपुर से हैं, सेक्टर 5 से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी। अगला मैसेज है जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलेज डिकेस्ट्रो। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, जोडा सिटी दीवाना, पंखर और जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबरॉय। आप सभी का ये मैसेज मिला है। और अगले श्रोता हैं, ये मैसेज हम पहले शामिल कर चुके हैं तो अब दोबारा से गुंजाइश नहीं। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम, रमापाली, सुनील पाठक और विनोदपुरी। गुन्नौर से हैं आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। बक्सर बिहार से फरमाइश आई है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू की ओर से। डुमराव बिहार से ही हैं डब्ल्यू अंसारी, सोनम, अदीबा और दानिश अंसारी।

उत्तर प्रदेश के श्रोता है मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। अगला संदेश है धनौरी तेलीवाला के श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद बीबी, आलिया और आयान बाबू। डाबकी रोड अकोला से फरमाइश आई है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव, आरव और अर्पिता की ओर से। अगला अनुरोध है वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली के श्रोता हैं जिशान वारसी, इमरान और रेहान शेख। करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम और इरम गुड़िया और शोएब खान। और आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में ये गीत जो है फिल्म छाया से। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना है और सलील चौधरी का है संगीत।

अगले गीत के लिए आप सभी का संदेश हमें मिला है। पटियारी रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं अहमद खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल और बेबी अरीबा और हबीबा। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी। अगला मैसेज है ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह की ओर से। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी, महाराष्ट्र के श्रोता हैं रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा ही संघई परिवार। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदूरकर, तेजस्विनी भाई, माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेया, शंकिता और अनिकेत चौहान। नई बस्ती गंज टुंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन, हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी। वडेंखेड़ा पंजाब के श्रोता हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बाता परिवार, मुकेश बाता, नीलम बाता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बाता। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा के फरमाइशकर्ता श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और उनके परिवार के सभी सदस्यगण। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवहानकर, राही, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस, एकाश गवहानकर और लाला टुक टुक गवहानकर। अगला मैसेज है गांव मुरादगढ़ से हैं रमेश कुमार कांबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कांबोज। अगला फरमाइशी संदेश है नाम नहीं लिखा इन्होंने, चकला बाजार सामाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म गोरा और काला का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, लक्ष्मीकांत तेरेलाल का संगीत और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने प्रोग्राम चांदनी रातें में। अगला मैसेज है बीड शहर महाराष्ट्र से आनंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जय श्री महत्री, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवल और पीबी कुल थे। जमशेदपुर झारखंड सुपाही साहिगांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली और देवेन जी। अगला मैसेज है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता और पेहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार, सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रियाज, जियाज, टुसी, आयुषी, अनुरुद्ध बाबू, मुनी देवी शाह और जयप्रकाश साव और बसंत लाल साव, हीरा मोती पन्ना लाल साव। अगला मैसेज है बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेध कुमार, साधना पवन, बड़सिंगी बुलढाणा से हैं अमूल मानकर, शोभा ताई और श्लोक और साथ हैं दीपाली। कांसिली कला जिला यमुनानगर हरियाणा के श्रोता हैं जय सिंह काम्बोज, विजयन सिंह, रिदम निश्चय सिंह काम्बोज, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरौड़ी। अगले फरमाइश करता श्रोता हैं पद्मापुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, हबीबुर रहमान और अताउर रहमान की फरमाइश पहुंची है। अगला मैसेज है जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज मुलानी, दिलशाद नसीर और बानू भी बादशाह और पूरा ही मुलानी परिवार। ये मैसेज आया है फुलचिंचोली तालुका पंढरपुर सिटी। अगला मैसेज है मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से है गंगाधर येमेकर, प्रमोद, प्रदीप येमेकर। अगला मैसेज है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से है अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद, फारूक फूल वाले, खलील सैयद, खलील मुबीन भाई, मोहम्मद यासीन, मूसा करीम, शेख सलीम, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना के हैं आप सभी श्रोता। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ा गाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी भगत। हीरा भाऊ बिड़वे, अनिकेत सोनवणे, शुभांगी श्रावण और अनीता बिड़वी। आप सबका ये मैसेज है रेडियो क्लब श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से फरमाइश आई है मास्टर अलीम पटेल मुजाहिद और नदीम पटेल की ओर से। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। मालियान सरधना मेरठ के श्रोता अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जिव्यम जैन। लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के श्रोता हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, काना, मनोहर बाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदी बाई बागरी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं रेशमी रुमाल फिल्म का गीत। आवाज है मुकेश की, बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है बाबुल।

अगले गीत के लिए फरमाइशी मैसेज है शेरवानी स्कूल गंज रुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुगना अंसारी और आर्या अंसारी। गांव हरिडू चांडिल झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, मनमोहिनी दीनबंधु महतो। और अगला व्हाट्सएप संदेश है शास्त्री नगर बीर शहर से हैं किशन सबकाल, आशा सोनिया और विशाल सबकाल। 0 मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। अगला व्हाट्सएप संदेश है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। भागलपुर बिहार से अश्विन कुमार साह, अमरदीप कुमार साह, पशुपति और कमल कुमार का फरमाइश का मैसेज आया है। मथुरा से हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा, हिना, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि। अगला फरमाइशी मैसेज है फुलगांव निज़ामाबाद तेलंगाना से वाहिद रूमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, जुनैद, जुबैर, मुकरम, नुमान, फुरकान, जाकिर, फाजिल। और अगले संदेश की ओर बढ़ें तो इसे पहुंचाया है गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया ने। मोहाली पंजाब से देखिए ये मैसेज पहले शामिल किया जा चुका है। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और साथ हैं अंकुश अरोड़ा। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। अगला फरमाइशी मैसेज पहुंचा है मुंदी चक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शास। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता।

भाड़गंज मुल्तानी ढाणा से फरमाइश पहुंची है अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक की। कैथल हरियाणा से है मधु नायक। अगला मैसेज है दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। और आप सभी की फरमाइश पर अगला गीत है सुमन कल्याणपुर की आवाज में। साहिर की शब्द रचना है, रोशन का संगीत है और फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

और अब अगला मैसेज है हमारे पास, नबी हसन अब्बासी शहनाज नवेद हसन सुहेल हसन रसीद वारसी अनम और यशफ अब्बासी का है। मारहरा दरवाजा एटा के हैं आप सभी सुनने वाले। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। अगला व्हाट्सएप संदेश है, करणवीर हाउस भूचो कैचिया फटिंडा पंजाब के श्रोता हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिज्योत। भोपालगढ़ राजस्थान से फरमाइश आई है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार की ओर से। मोहल्ला फतेहगढ़ पंजाब से हैं, देखिए ये मैसेज पहले शामिल किया जा चुका है और ये भी आ चुका है भाई। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। अगला व्हाट्सएप संदेश

शाह मोहम्मद वकार फरीदी इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजा रानी और हिना कौसर का मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं। अब यही मैसेज दूसरे नंबर से फिर से खुल गया। ये छोटा बाजार कुरुक्षेत्र से हैं श्याम शर्मा मिली शर्मा चिराग राघव तनुज पलक शर्मा मास्टर उदेश। और अगले मैसेज की ओर बढ़ें तो देखिए ये मैसेज नहीं किया जाएगा शामिल क्योंकि दोबारा पहले पढ़ चुके हैं इसको। चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। अगला मैसेज है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं दंतरेगी से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। सिद्धार्थ गुंडा ने अर्चना ताई हीरामणि शेंडे प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडा ने का मैसेज है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। अगला मैसेज है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा का। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़ विकास प्रीति आशा गायकवाड़ दीपांजलि दिशा बाघमारे और शशांक बाघमारे का मैसेज है। और आप सभी ने सुनना चाहा है बम्बई का बाबू इस फिल्म का गीत रफी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सचिन देव का संगीत है और मजू सुल्तानपुरी की शब्द रचना।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनेंगे आप अंग्रेजी समाचार। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता